0: इसकी जान बख्श दी।
1: मेरा बाप और भाई मुझे शाम की बहू बनाना चाहते हैं। बाजार के सामान की तरह मुझे पेश किया गया। यह है मेरा बाप और बनी उमैया की गैरत। देखना चाह रही थी कि तुम अलवे गैरत रखते हो तो क्या करोगे, और देख लिया।
0: क्या तुम बासित की जगह लेना चाहते थे?
2: जो जहन्नम मेरे लिए बनाई है बासित के हाल से बेहतर नहीं है।
0: हैफ है तुम्हारी जवानी पर, जो बुजुर्गों के सियासत के खेल में जाया हो रही है।
3: तुम्हारी माँ से सुना है नामोस के सिलसिले में अली से ज्यादा कोई गयूर नहीं था। अब जब मुसलमानों की नामोस तुम्हारी पनाह में आई है तो तुम ऐसा कर रहे हो?
2: आया हूँ ताकि चादर से पैर बाहर निकालूं और तुम्हारी बेटी का हाथ मांगूं।
0: मैं नायला के साथ उसके निकाह के लिए राजी हूँ।
2: तुम क्या सोचती हो, मैं तुम्हारे इश्क में शियाने अली का खून बहाऊंगा?
1: मेरा फैसला वही है, या मुझे निकाह की इजाजत दे बगैर किसी शर्त के, या मैं वो करूंगी जो मुझे नहीं करना चाहिए।
4: क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें दुल्हा देखने की आरजू एक उम्र से मेरे दिल में बसी है?
2: अगर तुम उनके नाम और नमक को हराम नहीं समझती, तुम्हारा हुक्म सराखों पर, मुझे तन्हा ना छोड़ो।

0: खुशामदीद भाईजान, तशरीफ लाइए। आइए और देखिए क्या बंदोबस्त किया आपके लिए। हकीकतन आप इसके लायक हैं।
1: ढोल ताशे बजाओ, दूल्हा आ गया है।

0: देख रही हो ना तुम?
1: आखिरी बार पता नहीं कब जनाब औहद का रक्स देखा था, आज तो जनाब बहुत ज्यादा खुश हैं। लगता है इन्हीं के कुप्पे के रईस हैं।
0: इस घराने की नौकरानियों के लिए खुशी और गम में कोई फर्क नहीं है। साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, बस।
1: समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे आ गई। एक तरफ तो वो गुस्सा और बेइज्जती करना और दूसरी तरफ ये इज्जत और एहतराम।
2: पुतला बन गई हो, आओ और मेरी मदद करो।

0: से शादी क्यों नहीं कर लेती? नायला जो अजादार थी शादी कर रही है। तुम तो माली तौर पे जरूरतमंद भी हो।
1: इस घराने की नौकरानियों के लिए क्या खुशी और क्या गम, कोई फर्क नहीं है।
0: कहाँ? दुआ करती हूँ कि रहती दुनिया तक खुदा इस घर के लोगों का साया हमारे सरों पर बाकी रखे।
2: आप बस भी करो, मेहमान नवाजी का सामान देकर नायला के पास जाओ।
3: ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खानम जान चेहरा छिपा लीजिए, पूरे शहर का दिल चुरा चुकी हैं।
2: बस करो, नायला के पास जाओ।

0: काम था मुझसे।
1: अकेले में दम घुट रहा है, अब बस भी करो, जितना हो गया वो काफी है। कहीं देखा है कि सूरज को सजाया जा रहा हो? जब तक मेरे पास हो मुझे याद रहेगा कि क्यों घर और घराने से दूर दूल्हे के जोड़े में यहाँ पे हूँ। जब नजरों से ओझल हो जाती हो तो डर और परेशानी मुझे घेरने लगती है, उस वक्त मुझे कुछ भी नजर नहीं आता।

0: तुम्हारी बहन आने को तैयार नहीं हुई? ये जो तुम्हारे हाथ में है, क्या वो तुम मेरे लिए लाए हो?
1: डर था कि कहीं नजर ना लग जाए, जबकि मैं पर्दे के पीछे से देख रहा हूं, मगर मेरा डर बढ़ गया है।

0: तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए।
1: अरे माशाल्लाह,
0: दुल्हन का चेहरा देखने के अपने आदाब है बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा देख लिया?
1: नहीं।
2: जनाब अहद और नईम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम खवातीन के दरमियान हो। अंधेरे में लड़की का चेहरा देखने के लिए कमरा तैयार नहीं किया अभी। अभी जाओ यहाँ से।
3: माफ कीजिएगा।
2: चेहरा देखो जरा।
0: माशाल्लाह,
2: तुम इससे भी ज्यादा काबिल और खूबसूरत हो। लेकिन अगर तुम्हारा दिल आ गया है तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारी मर्जी वही होगा। बस मुझे इत्मीनान दिला दो, वाकई उसे चाहती हो अपने पूरे दिल से।
1: पूरे दिल से? खानम जान, जनाब औहद को आपसे काम है।
2: अभी आ रही हूँ।

0: क्या करूं मेरे बच्चे, जाऊं या ना जाऊं? मेरा दिल खून का प्याला हो गया है बेटा। मुसीबत में फंसी अपनी माँ के लिए दुआ करो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा।
1: मैंने नहा लिया।
0: सलाला, 100 मर्तबा तुमसे कहा है कि अपना सर धोने से पहले मुझे बुला लिया करो। देखो इसे, अभी भी वैसी ही हो जैसे नहाने से पहले थी। सुनो, फिर से आप गली में मत चली जाना, थोड़ी देर तो साफ सुथरी बनी रहो।
2: चुप भी करोगी आया? बच्ची के साथ इस तरह सख्ती से पेश आना बंद करो। इसके लिए इतनी मुसीबत काफी है कि अपने बाबा से दूर है। आहिया माँ बन चुकी हो, सख्ती झेलो, मुसीबत सहो और सब्र करो।
0: अगर कुछ कह रही हो तो, मुसीबत सहने और सब्र करने की ताकत भी है हिलाल की माँ।
2: अब क्या किया है?
3: बहुत मुबारक हो बेटा।

0: मुस्कुराओ मुस्कुराओ, लड़की की अच्छा शिकार फंसा रखा है और अभी तक इससे अनजान हो। हमारा कमांडर दामाद लग रहा है ज्यादा खुश नहीं है।
1: इत्तेफाकन इसका उल्टा है। बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैंने कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधों पर रख दी है। हिलाल को अपना दामाद बनाना आसान नहीं है। जो बेटी उसे दी है बड़े नाजों से पाला है, सुकून और चैन के अलावा कुछ नहीं देखा। अगर देखा होगा

0: एक तरफ तुम और एक तरफ ये नाजों की पली हुई।
1: तुम्हारी मर्दानगी और शुजाअत का शोर कूफे के चप्पे चप्पे में है,
0: मगर यहाँ से काम और मुश्किल और तुम्हारा बोझ और भारी होगा। बजाएं।
2: मुबारक हो दोनों को।

0: नहीं तलमा नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो?
1: क्या
0: तलमा कहाँ है? हर जगह मैंने उसे ढूंढा लेकिन मुझे नजर ही नहीं आ रही।
1: अपने सफर का बहाना करके नहीं आई?
0: क्या मतलब, उसका सफर आज रात थोड़ी ना था।
1: मुझे क्या पता, आप जाइए खुश रहिए, आज रात आपकी बेटी की रात है, तलमा की नहीं।
0: दिल खोल के पीजिए।
2: बहुत ही ठंडा और मजेदार है। खुदा तुम्हें सलामत रखे, मेरी जन्नती हूर इन जहन्नमियों के बीच ना रहो।
0: उस लड़की के घर से यहाँ तक कोई भी नहीं आया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम में से कोई रहे और कोई ना रहे? पता है आपको, पूरी दुनिया के हजारों में से एक बहू और दो पोते थे, वो भी नहीं आए।
2: नहीं आए?
0: सफर का बहाना बना रखा है।
2: मैंने हुक्म दिया था सबको रहना है, पता नहीं वो खुद बहरी है या नहीं।
3: अलवान, अलवान,

0: लगता है जनाब का मुंह सीधा नहीं होने वाला। कल सवेरा होने से पहले निकलते वक्त घर के अंधेरे में ये मत कहना कि मेरा फला कपड़ा और टोपी कहाँ रह गई है, मिल नहीं रही। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? जवाब दो।
1: नहीं। आज फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही होगी। बहुत बुरी हो माँ, काश मुझे पापा के साथ जाने देती।
0: ये पहन, दिमाग खराब कर दिया है आतिफ। कितनी बार कहूँ, बच्चा वहीं जाता है जहाँ उसकी माँ होती है। देख नहीं रहे हो क्या कि कितना काम पड़ा है? जब तुम्हारे बाबा आ जाएंगे रात में जाके दुल्हन को देख लेना। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो?
1: नहीं पहनूंगा मैं।
0: आखिर क्यों?
1: क्योंकि इसे दादा ने खरीदा है।
0: आखिरी बार बड़ों की बुराई करते हुए सुनो, समझे?
1: अच्छा है कि आज की रात ही यहाँ से चले जाएं।
0: हमेशा के लिए थोड़े जा रहे हैं, वापस आएंगे।
2: रुको, मेरे बाबा ने हुक्म दिया है जल्दी से तीनों शादी में पहुंचो।
0: इससे पहले हुक्म दिया था कि तलमा उनके घर में कदम न रखे। ये पुरानी दुल्हन किस हुक्म पे अमल करे?
2: बगैर एक लफ्ज बोले चलो। कहाँ? नईम की बीवी हो, कोई नौकरानी नहीं हो। अपने कपड़े बदल लो तब चलते हैं। वही कपड़े पहनना जो शाम में यजीद की दावत में पहने थे। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि यजीद खुद तुम्हारी बहन से ज्यादा तुम्हें देख रहा था। सुन लिया ना क्या कहा? जाओ पहनो।
1: बाबा ये कपड़े अच्छे हैं ना?
2: बहुत अच्छे।

0: ओ शामिल, मेरी आंखें राह देखती रह गई, कहाँ थी आप? जैसे ही उसे देखा तुम याद आ गई। एक लाल गुलाब की तरह नयन के कमरे में थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। जाओ देखो मेरी बेटी कैसी लग रही है आज। हाँ
1: खुशामदीद, इंतजार ही कर रही थी।
2: सच में क्या जोड़ी बनाई है लड़की, काश कि तुम्हारी थोड़ी सी अक्ल मेरे पास होती। कोई तुम्हारे मंसूबे को समझ नहीं सकता।
1: मैं
2: यजीद के चंगुल से निकलकर कूफा के कमांडर के पहलू में आ गई, कमाल है। इसे सोने में भी तोलो फिर भी कम है, कम है ऐसे मर्द जो अपने आप को किसी लड़की पे कुर्बान कर देते हैं। मुबारक हो तुम्हें।

0: माफ कीजिएगा भाई, बस इतना ही बचा है। ईद मुबारक।
1: आपको भी मुबारक हो। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
2: सलाम।
0: सलाम बहन। गोश्त तो है नहीं, अगर जिंदा दुम्बा चाहिए तो ले सकती हो।
2: नहीं चाहिए, रहने दीजिए आप। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज। बेटी सुनो, दुकान समेट लो। मुस्लिम फिर खास भूसा दरवाजे पर डाल दिया है, समेट कर दरवाजा खोल दो, इन बेजबानों को अंदर भेज दो। बहुत अच्छा किया कि आज आ गई, तुम्हारी आज की मदद ना होती तो उसका आधा भी नहीं बेच पाते।
2: घर में तो कुछ करने को था नहीं, मगर ऐसा लग रहा है आप बहुत मसरूफ हैं बाबा। सामिया का घर, नजर का गोश्त, और उसके बाद पुराने रिश्तेदार जनाब औहद।
0: तुम फिर से ताना दे रही हो।
2: मैंने पता नहीं क्या किया था जो रिश्तेदारी भूल गए और हम दोनों को बुलाया तक नहीं उन लोगों ने। ऐसा भी हमने क्या कर दिया?
0: कब से नजर खाने के लिए दावत की जरूरत पड़ने लगी? हाँ,
2: आपको भी मदऊ नहीं किया ना?
0: क्या कह रही हो, कौन सी दावत, कहाँ?
2: सामिया के बेटे और औहद की बेटी का निकाह, हिलाल और नायला। ख्वाब में भी देख सकते थे ये दोनों खानदान रिश्तेदार बन जाएंगे।
0: क्या बकवास कर रही हो तुम?
2: पूरी जिंदगी मेरी माँ के रिश्तेदारों से नाता तोड़ लिया, हमारा आना जाना तक हराम कर दिया था। आज सबसे पक्की शिया अली के दुश्मनों से बेटी ले रही है, अजीब नहीं लगता?
0: यकीन है तुम्हें? मैं वहाँ था ना, उसकी माँ सामिया ने कुछ कहा ना उसकी बहन ने।

0: हिरन का शिकार कर लिया कमांडर?
1: देर कर दिया आने में।
2: खुशामदीद,
1: खुशामदीद,
2: खुशामदीद, खुशामदीद।
0: अभी भी मेरी नाराजगी बाकी है, मगर घर पे भी नहीं रह सकती। डर रही थी यही एक शादी करो और मैं ना आ सकूं। इस हुस्न पे कुर्बान जाओ। माशाल्लाह।
1: खुशामदीद।
0: सच में हिलाल, हमारी छोड़ो, कम से कम सब्र करते बासित रिहा हो जाता तो जरूर आता। और तुम इस

0: वहाँ तन्हा और अकेले बिल्कुल नहीं रहते।
1: अगर उस लड़की की परेशानियां ना होती तो मैं कहाँ और ये बेवक्त शादी का। देख रही हूँ, डर रहा हूँ कि अपने शौहर के अधूरे काम को पूरा ना कर दे।
0: खुदा ना करे, फिक्र मत करो, मेरा ध्यान उस पर है।
2: जनाब औहद बात करना चाहते हैं, आप घर में तशरीफ लाए।
3: इस रिश्ते के बाद हिलाल

0: मेरे लिए दूसरा बेटा होगा। आज रात की मुनासिबत से एक तोहफा लाया हूं कि इस जैसा पूरे कूफा और शाम में नहीं। ये मेरे घर का सबसे प्यारा तोहफा है। इसे घर वालों के भरोसे पर तुम्हें सौंप रहा हूं।
1: ये तो जाहिर है कि खुदा ने किस्मत बांटते हुए इस कमानदार के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी।
2: खुदा अली के शिया की हिफाजत करे, जो फिर से खुशी और हंसी को तुम्हारे घर वापस लाया है।
0: हिफाजत करेगा, बजाइए।
1: किसके हाथों से लिया जिसने इतना मस्त कर दिया?
3: तुमने मुझसे एक वादा किया था।
1: होश में नहीं हूं, दामाद आदमियों में से।
3: रुकिए जनाब औहद, आप तो कूफे में माविया के कातिब और चुने हुए आदमी हैं, तो फिर कैसे इकलौती बेटी को एक ऐसे घराने की बहू बना रहे हैं जिसका हर एक फर्द अली के नाम पे जान देता है?
0: इब्ने हुरैस, क्या हम में और अलवियों में ये पहली शादी है? बोलो।
3: नहीं।
0: तो फिर मुंह मीठा करो।
3: तुमने उसके बाप को सिफीन में कत्ल किया। उस नए दामाद की जाती दुश्मनी के बावजूद बैठो और अपनी बेटी की खुशी का इंतजार करो।
1: इब्ने हारिस, चलिए।
3: तुम अली को नहीं मानते, कैसे इनके साथ रिश्तेदारी बनाने पे तैयार हुए हो?
1: चलो जरा हवा खाने।
0: क्या ये पहली शादी है हम में और अलवियों के दरमियान? बताओ तुम लोग। तो फिर मुंह मीठा करो।
4: सब्र करो,
0: सब जानते हैं।
4: जिस दिन से इस कपड़े को पहन रखा, उसके बाद से इस बात को भूल चुका। इख्तिलाफात
0: बहुत है।
4: सुनो और गुजर जाओ।
0: जिंदगी तकदीर का खेल है और अल्लाह के फजल और करम से हिलाल उससे कामयाब निकला है। बजाओ।

0: काश उसे यहाँ ना बुलाया होता, वो खुद नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है।
1: अपनी मर्दानगी को साबित करने का वक्त आ गया है हिलाल, वरना जिस शोर की आवाज सुन रहे हो शाम तक जाएगी और हमें बर्बाद कर देगी।
2: लोगों की बकवास तो कभी खत्म नहीं होगी, मगर फिर भी जैसा आप हुक्म करें।
1: मेरे मौला वली नेमत के तरीके से खड़े होकर बुलंद आवाज में अली पे खूब लानत भेजो।
2: क्या करूं?
1: अली पे लानत भेजो।
2: अपने मौला पे लानत करूं? नहीं, आपने अपनी बेटी को ऐसे शख्स को दिया है जो कभी जुल्म नहीं करता। मेरे मौला अली को गलत कहना मुझ जैसे के लिए खुला हुआ जुल्म है।
1: तुमने कहा था कि नायला से शादी करने की शर्त अपने खानदान से बेजारी, बनी उमैया की रस्मों पर अमल करना है। तुमने मान लिया? नहीं माना?
2: मेरा खानदान अली को मानने वाला है, मगर मेरे और मौला के दरमियान वही निस्बत है जो अब्द और परवरदिगार के दरमियान है। मुहाल है मैं ऐसा करूं।
1: उसी अली की कसम जिसे खुदा की जगह पर रख दिया गया है, अगर इस शर्त को पूरा नहीं करोगे, इस शादी की हसरत तुम्हारे दिल में बाकी रह जाएगी। इस शादी की चमक धमक को मत देखो।

0: आलम झपकते ही सब बर्बाद कर दूंगा।
1: सलाम।
0: सलाम। वालेकुम सलाम। माजिद, माजिद।
2: जुबैदा, हमारे लिए शरबत लाओ।
3: जी सर।

0: तुम्हारे और बाबा के बीच कोई शर्त थी और मुझे नहीं बताया।
1: तुम्हारे बाबा की शर्त अली को लानत करने की नहीं थी।
0: तब क्यों चुप थे और कुछ क्यों नहीं बोले?
1: गलत आदमी को चुना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे मौला अली को गलत कहना मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे बाप ने जो कहा इसे ऐसी कपकपी मुझ में तारी हो गई है जो मर्दों की शान के खिलाफ है।
0: जब शादी के लिए राजी हुए थे उस वक्त मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में थी या नहीं? अगर नहीं तो अब इस तरह खौफ का चेहरे पर आना किसी मर्द या आशिक के लिए मुनासिब नहीं। और अगर मुझ पर रहम खाकर खुदा के लिए शादी पर राजी हुए हो तो इसी बात का गुमान था जो अभी हो रहा है। तकिया कर लो, आज अली के जाने वाले कबीले की एक लड़की की गैरत नाइला की आस है। उनके दरमियान जिन्हें तुमने देख ही लिया है कैसे मेरी जान के पीछे पड़े हैं, मुझे अकेला मत छोड़ना। हेला, पीछे हटोगे तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी। तुम्हारे इस दरवाजे से जाते ही कहानी पलट दूंगी, देख लेना। इससे पहले कि कोई और मेरी जान का दुश्मन बने, खुद ही अपनी जान दे दूंगी।

0: jeans auf me. कोई जाने ना जाने मगर आप जानते हैं कि अगर मैं यहां हूं और इस शादी पर राजी हुआ हूं तो यह आपके लिए था। अगर अपने खानदान को पीछे छोड़कर आपकी दुश्मन की बेटी को बदबख्ती और मौत से निकालने चला हूं तो आपकी रिजायत के लिए था। क्यों मेरा हाथ नहीं थाम रहे? मुश्किल को शाही कीजिए आका, मुझे अकेला ना छोड़िए।
1: तलवार के रक्स का वक्त आ गया।

0: आप ये लीजिए बाबा, हमारी दुकान का भी ध्यान रखिएगा। चलता
1: हूं। जरूर।
2: एक बार फिर से कहो, क्या बोला उसने?
3: वही एक जुमला, डरी और सहमी हुई थी, कह रही थी आपकी बहन है।
2: कोई उसके साथ नहीं था, कोई कनीज, खुदामा,
3: कोई भी नहीं।

तय पाया कि जनाब औहद के कमरे में आपका इंतजार करें, तशरीफ लाइए। आइए।

बहन की जान, खुशामदीद, बगैर बताए आ गई। लानत हो इन शामियों पर जो फिर तुम्हें आंसुओं से भरी आंखों के साथ वापस भेज दिया। बहन देखूं तो जरा। अगर तुम्हारे नाकारा शौहर के बजाय तुम्हें नायला को मरने के लिए भेजा होता तो ऐसा ना होता।

0: मुझे तुमने बीच में क्यों रखा? ससुर और बहू के झगड़े में मुझसे क्या मतलब?
1: बेहतरों का मुंह बंद रखो।
0: खुदा की लानत हो इस खानदान पर।
1: तुम काम कर चुकी हो, उजरत भी ले चुकी हो, अब तुम जा सकती हो।
0: अपना हाथ हटाओ। मेरा काम लोगों की जान लेना नहीं, ये तुम और तुम्हारे खानदान का काम है।
1: खुदा का शुक्र करना चाहिए, तुम और तुम्हारे बच्चे अब तक जिंदा हैं।

0: बेटा बोलो।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और खुदा की लानत हो।
0: वाह वाह, महफिल की असल मलिका भी आ गई। खुशामदीद हिलाल की मां।

हिलाल की माँ की तरफ से तोहफा दुल्हन के लिए, ताकि उसके खूबसूरती में इजाफा हो जाए। अब और आपकी खुशियों के दरमियान नहीं आऊंगी। जनाब अहद, अभी तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ, मगर ये जान लीजिए कि सामिया ने इस घर को बेटा नहीं दिया, बल्कि इस घर से बेटी ली है।

0: तुम्हारे बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
1: यकीन मानो तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहते थे। जो भी किया बनी उमैया की रस्मों में से था।
0: कौन सा यह निकाह उसूलों के साथ हुआ था जो रस्मों को निभाया गया?
1: सही कह रहे हो, किसी ऐसे पे लानत करना जिसे जिंदगी भर चाहा है आसान नहीं है, वो भी शादी के बीच। ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम्हारी माँ कुछ ऐसा करेंगी। इज्जत रख ली। हिलान,
0: हाँ।
1: जिस माँ को मैंने देखा, कतई रहम तो बहुत दूर की बात है, बल्कि तमाम मसाइल को कबूल कर लिया ताकि तुम्हारी तरफ से कहीं कोई कमी ना रह जाए। चलो कल तुम्हारे घर चलते हैं और शुक्रिया के बहाने तुम्हारी माँ से भी मिल लेते हैं, ठीक है?

0: कहाँ चलती है? सुबह से इंतजार कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ कि टूटे हुए दांतों से खाने का मजा नहीं लिया जाता।
1: पहचाना नहीं तुम्हें।
0: खाक हो तुम पर हिलाल, बहुत खराब सौदा करने लगे हो। तीन बेचकर बीवी लाए हो।
1: अली का दम भरते और मेरी नामोस का रास्ता रोकते हो।
0: तुम्हारी बीवी के रास्ते में नहीं आ रहा है, रास्ता खुला है, चले जाओ तुम।
1: किनारे।
2: पहले तुम जाओ, अगर सब ठीक रहा तो मुझे बुला लेना।

0: सलाम।
1: सलाम।
0: कितनी प्यारी बच्ची है, क्यों रो रही हो?
1: कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, जैसे मैं इंसान हूँ ही नहीं, मुझे रुलाते रहते। आप कौन है?
0: मैं मेहमान हूँ।
1: मेहमान?
0: हिलाल की बीवी, पहचानती हो उसे?
1: तो इसका मतलब कि आप ही दुल्हन है? कितनी खूबसूरत है आप। मैंने अम्मी से बात की है, बड़े होकर मैं भी ना शादी करूंगी, बिल्कुल आपकी तरह। मगर मामू से नाराज हूँ मैं, अपनी शादी की हमें कोई खबर ही नहीं दी, मगर आपसे नहीं।
0: सलाम।
2: सलाम। यहाँ क्यों, अंदर आओ। आओ आओ, खुशामदीद प्यारी दुल्हन, तशरीफ लाओ।
0: मैं माँ बेटे के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए।
2: कैसी मुजाहिमत, कल से तुम भी इस घर के लोगों में से हो। तशरीफ लाओ बहू, अंदर चलो।
3: अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
2: ये आप ही का घर है मेरी बहू, तशरीफ लाइए।
3: अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
2: तशरीफ लाइए।
3: सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अशहदु अन्ना अलैया वलीउल्लाह। वा अशहदु अन्ना अलैया हुज्जतुल्लाह। हय्या अलल फला। हय्या अला खैरिल अमल। हय्या अला खैरिल अमल। कद कामतिस सला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुबारक।
4: खुशकिस्मत है ये घर जिसमें दो मेहमान हैं, जिनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा अजीज है। खुशामदीद, आपसे मुलाकात करके खुशी हुई हिलाल।
0: शुक्रिया।
2: माँ की जान, कितना खूबसूरत है।
1: आप ज्यादा खूबसूरत है
0: प्यारी बच्ची।
5: रात आपके गायब होने की वजह ये जनाब थे?
4: इंशाल्लाह तुम्हारे दामन भरने का वक्त भी आएगा।
5: किस्मत उसके मामू पे गई है। कुछ हुआ है क्या?
6: हिलाल, तुमने अली को बुरा कहा है, तुमने इस जबान से अली पर लानत की है।
5: नहीं की है।
6: बेटा और नई दुल्हन दोनों मुबारक हो। खुदा करे कि इस घर में हंसी खुशी के अलावा कुछ ना हो। फिर भी अगर किसी काम की जरूरत हो तो याद कीजिएगा।
2: शुक्रिया आने का।
0: देखा कैसे सारी खूबसूरती जिबाई एक ही जिस्म में सिमट गई है। नाम क्या है इसका?
6: अली।
0: के बाप की कमी पूरी हो जाए, इंशाल्लाह वापस आ जाए और तुम्हारे गमों का बोझ हल्का हो जाए।

0: खुदा तुम्हें दुगनी ताकत अता करे, नवासे को संभालना, बहू को संभालना।
1: खुदा का शुक्र है कि रहमत का दरवाजा इस घर पे खुल गया।
0: खुदा का शुक्र है।
2: हिलाल, हिलाल, भाई तुम्हें खुदा की कसम, उस देव से दूर रहो जो किसी को भी मारने से नहीं डरता।
0: वो क्या है?
2: तलमा रहीम की बीवी को मार दिया।
3: किसने मारा, सही से बताओ, पता तो चले।
2: कल हमल के दर्द की वजह से शादी से नहीं निकली थी, वालिया का तिजारत खाने तक पीछा किया। वहां अपने कानों से सुना, वो कह रही थी कि तलमा को मार दिया।
1: क्यों ये बच्चा रो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? अपनी दुल्हन को अकेला छोड़ आए हो और यहाँ जोर जोर से कानाफूसी कर रहे हो? ये अदब के खिलाफ है, न जाने क्या सोचेगी।

ये टोपी उतारता हूं मजबूरी से, फैशन नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में दोस्तों हिंदुओं के यहां एक मजहब है जिसका नाम है जैन, जैन मजहब, आर्य समाजी, माफ कीजिए, आर्य समाजी जो है स्वामी दयानंद वाले, वो मूर्ति को मानते नहीं, मूर्ति खंडन है, वो लोग खंडित मूर्ति को खंडन करते। वो हिंदुस्तान में जब मुसलमानों के सामने मुनाजरा करने के लिए और डिबेट करने के लिए आते थे तो पहले से कह देते सारे आओ शिया नाओ, इसलिए कि शियों की तौहीद जो है वो खालिस है, बाकी जितने मुसलमान आ जाए हम साबित कर देंगे कि आर्य समाज की तौहीद दूसरे मुसलमानों से बेहतर। निरंजन निराकार प्रभु, निरंजन निराकार ईश्वर क्या है। शेख सदूक अलैहि रहमा किताबुल खिसाल के पहली हदीस लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब जंग जमल छिड़ गई और तीर बरसते लगे, ऐसे में एक शख्स आया और उसने कहा या अली एक मसला पूछना चाहता हूं। तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा यह कोई मसला पूछने की जगह है, देखता नहीं। सलाम सलाम वाले, ये कोई मौका है पूछने का, जंग है, तीरों की बारिश हो रही है और ऐसे में तुम पूछ रहे हो, क्या पूछना चाहते हो? उसने कहा मुझे ये पूछना है कि ये जो तुम खुदा को एक समझते हो इसका क्या मतलब? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने हाथ रोक के कहा हट जा, बाद में मिंबर पे पूछना, मस्जिद में पूछना। मौला ने जवाब पे कहा आई इब्ने अब्बास हटा नहीं इसको, इसलिए कि इसी के वास्ते जंग हो रही है, इसी के समझाने के वास्ते तो जंग हो रही है। सुन है दोस्त पूछने वाले, अगर तूने नंबर और अदद के एतबार से उसको एक समझा है तो गलत समझा है। फलसफे की इतनी बारीक बातें मैदान जंग में समझाने का आखिर क्या मकसद था? मकसद यह था कि दुनिया के सारे काम बेकार है, अकीदा सही होना चाहिए। आप समझ रहे हैं भाई, अगर उसको तू अदद में एक समझता है तो बेकार है। उसने कहा कैसे? उसने कहा अगर तूने एक अदद के और न्यूमेरिकल ऑर्डर में समझा तो एक से पहले जीरो हो सकता है, एक के बाद दो, ये वो वहदहु ला शरीक है, उससे कबल अदब नहीं, उसके बाद तक नहीं आने। देर इज नो वॉइड बिफोर हिम, देर इज नो रेप्लिकेशन आफ्टर हिम, समझ रहे हैं आप? देयरफॉर ही कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज ए न्यूमेरिकल वन। तो सोच के आइए कहां वो, तो नहज बलागा में ये कहे कि वो एक है, सिफत उससे जुदा नहीं। भाई मैं खतीब हूं बोल लेता हूं, जब मां के पेट से पैदा हुआ तो बोलता था मैं, है? तो खिताबत और चीज है, मैं और चीज। आप आलिम हैं तो पहले जाहिल थे फिर आलिम बने, हजरत मां के पेट से कोई आलिम बनता है नहीं। तो इल्म और चीज है, आप और चीज है। भाई आप बहुत खूबसूरत हैं खुदा के फजल से, खूबसूरती और चीज है, आप और चीज हैं। बड़े ताकत थोड़ा तनुमंद हैं, ताकत और चीज है, या और चीज है। और जब क्या बताएं, ये सारी चीजें रिलेटिव हैं, ये हकीकत में एतबारी हैं। खुदावंद करीम के यहां ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी सिफत बाद में आई, वो आईने जात हैं।

अब वहां पर बुत बड़े बड़े पड़े थे, उसमें दो परिंदे की शक्ल में सफेद बुत भी थे जिसका ये सज्दा करते थे लोग। रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से उसमें दो आयतें डाल दी, वह तिलकल गरानी खुलूंगा वह इन शफात लतुर्तजा, ये है वो बड़े बड़े परिंदे सफेद बुत जिसकी शफात का कयामत के दिन उम्मीद रखते हैं। और सारे मुश्रिकीन खुश हो गए, हो गया कॉम्प्रोमाइज, मुश्रिकीन ने सजदा किया, रसूलुल्लाह ने भी सजदा किया। किताब अपनी है मेरे दोस्तों तबरी, उस मुसलमान की है जिसके यहां अहले बैत। रात हुई जिब्रील अमीन आए, कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो सूरा हमने तुम पे खुदा के हुक्म से नाजिल किया था, पढ़ के सुना, पढ़ के सुना। तो पैगंबर ने सुनाई वो आयतें, उसमें ये आयत दो डाल दी साथ में। तो जिब्रील ने कहा ये तो मैं नहीं लाया था, ये शैतान ने तेरी जबान पे जारी किया, इसका नाम है आयत शैतानी जिसका तर्जुमा हुआ सैटनिक वर्सेस। लिखने वाले को गालियां दे रहे, ठीक है अरे फांसी चढ़ा दो, मार दो, जो कुछ करना हो कर दो, और जिन्हें सिखाया उसको क्या कहेंगे आप। इन्हीं ने लिखा है, उन्हीं मुसलमानों ने लिखा है, एक तरफ ये है और एक तरफ आके देखिए हमारे अहले बैत रहमतुल्लाह के घराने में कि रसूलुल्लाह की क्या अज़मत है। तो जिसने जिनके यहां पहुंचकर हमारी नबुवत भी गई और तौहीद भी रुखसत, आप कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कीजिए, अंदाजा लगाइए। अभी इमामत और अदालत की बातें छोड़ देता हूं, अदालत पर हर इसलिए लगाई, सुनिएगा, अदालत इलाही को खत्म करने के लिए इसलिए कोशिश की गई और यह कहा गया, इन्होंने कहा अगर खलीफा अच्छा है तो खुदा का शुक्र अदा करो, अगर खलीफा बुरा है तो भी शुक्र अदा करो, इसलिए उसने भेजा। यहां इसका मतलब क्या, इसका मतलब बनू उमैया के मजालिम खुदा ने करवाए, बनू अब्बास के मजालिम खुदा ने करवाए, करबला का पूरा आलमिया खुदा ने करवाया, इनके जुल्मों को, इनके जुल्म को ढांपने के लिए खुदा की अदालत हो सकता है। इट्स ए फैक्ट ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी एंड नो वन कैन डिस्प्यूट कि अदालत इलाही को दरमियान से उखाड़ के फेंकने का मकसद यही था ताकि जालिमों ने जो भी किया है वो अल्लाह की तरफ मंसूब हो जाए और जो वो करे मुझे नहीं हो। हमारे यहां वो काले जो है शराब पीते थे, हम कहते कम्बा शराब इतनी में जली हो वाले, तो ये भी में जली हुआ, अल्लाह ने किया है इस वजह से दरमियान। अब अदालत भी रुखसत, अब बाकी रही इमामत, सिरे से मानते ही खत्म हो गई बात। तो जनाब जहां उसूले दीन खतरे में है वहां पर आप मुझे कहते हैं देखो हम सब एक हैं, क्या एक हैं, अब क्या एक इस चीज में। देखिए दुश्मन के मुकाबले में सबका एक हो जाना और चीज है, अपने उसूल को कुर्बान करके एक हो जाना ये और चीज है। ये दुश्मन के मुकाबले में अगर हम सब डट के खड़े हो जाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, ठीक है समझिए कि भाई जल्ब मनफात यानी मनफात को लेने के लिए, दफ़ ज़रर नुकसान को रोकने के लिए हम एक हो गए, मगर जहां यहां अभी अपने घर की बातें हो वहां तुम दुनिया को यह समझाना चाहते हो कि सब एक ही था, नहीं था और नहीं है, और बड़ा फर्क है मेरे दोस्तों, बड़ा फर्क। बस मैं ये कहा करता हूं कि करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अजीम कुर्बानी हुई है वो भी जिस पर हम और आप मिलकर आज सदियों से हम क्या हैं आबाओ अजदाद और उनके आबाओ अजदाद ने सदियों से मातम किया है और गम के आंसू बहाए हैं। मेरा सवाल एक ही है, रोते हम आए
سینے پر ماتم ہم کرتے ہیں, تمہیں درد کیوں ہوتا ہے؟ ہم تمہارے سینے کو تھوڑا مارتے ہیں,

तुम्हारी आंखों से अब रोते हम रोते हैं, दुख हम मनाते हैं, मातम हम करते हैं और दिल तुम्हारा टूटे जा रहा है। बात क्या, बात यह है दोस्तों कि एक एक हाथ जो सीने में पड़ता है कुफ्र के मुंह से निकाब को उठा देता है। यह है काफिर जिन्होंने इस्लाम के लुबादे में अपने आप को छुपाया। मैं परसों एक जगह पे मजलिस में कह रहा था कि कौमें दो किस्म की होती हैं। एक वो कौम होती है जिसका माजी मुर्दा होता है, सुनिएगा सीधे, जिसका पास्ट डेड। मैं कहूं मेरा बाबा मुसलमान, मेरा बाबा बादशाह था, दादा बादशाह था, पड़दा था, आप कहेंगे सब था, तू क्या है बता, ठीक है कि नहीं? इसलिए कि वो हड्डियां वो सीधा हो चुकी कब्र में, पिदरम सुल्तान बूत बूत खत्म शोध, तू क्या है, ठीक है। इन्नल फता मन कालहा अनरा लैसल फता मन काल कान अभी, जवान मर्द है जो कहे देख लो मैं ये हूं, नहीं कि मेरे बाबा थे, बाबा से कदम। अब सुनिए, कौम जिसकी माजी में सिर्फ हड्डियां हो या वो हड्डी भी बाकी ना हो वो कौम मुर्दा कहलाती है, इसकी क्यों तारीख जो है मुर्दा है। अफसोस है कि मुसलमानों के यहां औरों के जिन्होंने अहले बैत का दामन छोड़ा, आप सब मदीने मुनव्वरा जाते हैं पैगंबर की जरी को चूमने देते हैं नहीं, क्यों कहते खत्म हो गया मोहम्मद बाकी नहीं रहा, हड्डियां खत्म हो गई, अब सिर्फ ये ऊपर की जरी बाकी है, क्या चूमते हो? उनकी नजर में मोहम्मद मुस्तफा भी बाकी नहीं है और हम अहले बैत के यहां एक एक बाकी है। लिहाजा वाइब्रेंट कम्युनिटी होनी चाहिए, इसीलिए दुनिया डरती है, ए कम्युनिटी विच इज वाइब्रेंट एंड द हिस्ट्री इज नॉट डेड। सुनिए, जब इनकलाब ईरान आया और खुदावंद करीम इंशाअल्लाह इस इस्लामी इनकलाब को ताबा अबद बाकी रखे, तो अरबईन का जमाना आया पहले साल है और वो ईरानी मोमिनीन सब के रास्ते पर वो क्या कफन पहने हुए शबी खून के लगाए हुए कतरात या हुसैन करते हुए माथा। मिस्टर कार्टर ने देखा टेलीविजन पर, वो समझा कि आ गए खुमैनी मर गए। उसने दूसरे को पूछा ये क्या हो रहा है, आज कोई पहुंच नहीं मुसीबत ईरान पे वारिद हुई। किसी ने कहा नहीं वो तो जिंदा है शेर, वो जिंदा है, तो ये रोते क्यों है, पीटते क्यों है, कौन सी मुसीबत आई है? तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि बात ये है कि ये अपने रसूल के नवासे पर रो रहे हैं। तो उसने कहा ये वो कब मरा? उन्होंने कहा ये मरने की बात नहीं, मारे गए 1300 सदियों के बाद भी रो रहे हैं। तो जवाब सुनिएगा, और जिस कौम में 1300 सदियों के बाद शहीदों का खून जिंदा और ताजा हो उस कौम से डरिए। हाँ जी, इसलिए कि वो खून अभी तक जिंदा है, वो ताजा जोश मार रहा है, इसीलिए लड़का छोटा भी होगा एक मरतबा खड़ा हो जाएगा या हुसैन कहेगा वो खून अभी तक जिंदा है, समझ रहे हैं? और कल की खबर किसको है? कल की खबर है, अरे इस मिंबर से उतरने से पहले क्या होगा अल्लाह ही जानता है। एक लम्हे की खबर नहीं, फ्यूचर डार्क है। तो क्या कहिए इस कौम पर खुदा की क्या रहमत है कि इसका फ्यूचर डार्क नहीं है, इसके पर्दे गैब में जिंदा इमाम बैठा है।

दोनों गोशे में, दोनों एक्सट्रीमिटीज में, जहां हयात हो, जहां जिंदगी हो, उस कौम की क्या कहिएगा। अब आप मुझे चाहते हैं कि आपके जवानों घसीट के मुर्दों के हाले, जिनका न मुस्तकबिल है, जिनका न पास्ट है, उनके साथ में अपनी कौम को ले जाऊं और जवानों को कहूं कि तुम भी हाथ बांध के नमाज पढ़ो, अस्तगफुरुल्लाह, और तुम भी आमीन कहो, और तुम जो नमाजें पढ़ते हो तीन वक्त की पढ़ते हो, अल्लाह ने पांच वक्त की, कल जवाब दूंगा। बेवकूफ कहीं के समझ सके हो तुम अहले बैत को। नहज बलागा में मौला फरमाते हैं ला युकासु बिना अहले बैत, अरे हम अहले बैत पर किसी का कयास हो ही नहीं सकता। फख्र कीजिए कि हम अहले बैत के चाहने वाले, फख्र कीजिए कि हम उनकी फिक्र पे चलने वाले, फख्र कीजिए कि उनके बताए हुए उसूल पे चल रहे हैं और रास्ता खोया नहीं। और जो रास्ता खोने के लिए जवानों को आमादा करे उसे कह दीजिए भाई आपको मुबारक, जाइए, हमारे जवानों को गुमराह नहीं। समझ आई ना? बड़ी जहमत उठा के इस मिल्लत में बहुत से लोगों ने अपना खून बहाया है, ये शाख, ये फल, ये जड़, ये तना, ये पूरा दरख्त शियत का, उसमें शहीदों का खून है मेरे दोस्तों। सो आवर इंक्लिनेशन एंड प्रोपेंसिटीज टूवर्ड्स अहले बैत इज गवर्न्ड बाय रैशनल एंड नॉट बाय सेंटिमेंट्स। समझ रहे हैं? गवर्न्ड बाय रैशनल, नॉट बाय सेंटिमेंट्स। बाद में पहले अक्ल से हमने सोचा है, वे किया, जिन्होंने वे नहीं किया था उन्होंने पैगंबर की लाश को यूं ही छोड़ा था, और खिलाफत की टोह में चले गए। आज रसूलुल्लाह की शहादत की शब है दोस्तों, उनकी वफात की शब है 28। अगर एक मिनट के लिए आप तसव्वुर कीजिए कि आज वफात पाते दारुस्सलाम मसलन, और हम आप नए मुसलमान होते, हमारे दरमियान से रसूलुल्लाह उठ गए होते, तो आज मेरी और आपकी क्या हालत होती? किसी पहलू चेंज ना होता, रोते रोते हम भी मुमकिन है कि बेहोश हो जाते अगर मर न जाते, कि हमारे दरमियान से रहमत खुदा की उठ गई, हमारा नबी उठ गया। और क्या हो गया मदीने वालों को कि आज गुस्ल के लिए अहले बैत के लोग हैं और बाकी सब दुनियादारी में पड़े हैं। बात यही है, जहां अहले बैत का दामन छूटा वहां सब कुछ। बस वो आखिरी मराहिल, अल्लाह रसूलुल्लाह हैं अपने बिस्तर पर और फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा बैठी हैं। दोस्तों मसाइब के बयानात में तसव्वुर शब्द है और ज्यादा नहीं, तसव्वुर शब्द है, इसलिए कि आज से घोया अब अहलुल बैत यहां मसाइब की इब्तिदा है। अब यहीं से आए दोस्तों करबला की राहें खुलेंगी, यहीं से बहुत कुछ होगा। सुनिए, फातिमा जहरा बैठी रो रही हैं, एक मर्तबा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बीबी ने कहा रसूलुल्लाह की हालत ऐसी नहीं है, तुम रसूलुल्लाह को आराम करने दो। दूसरी मर्तबा फिर जब दरवाजा खटखटाया, बीबी ने फिर कहा रसूलुल्लाह की तबीयत और हालत मुख्तजी है कि कोई अभी डिस्टर्ब न करे। जब तीसरी मर्तबा दरवाजा खटखटाया और बीबी चीख मार के रोने लगी तो पैगंबर की आंखें खुली और कहा फातिमा जिंदा हूं, अभी हुक्म आया नहीं है, क्यों रोती हैं आप? कहा बाबा कोई मानता नहीं, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है मुसलसल, गो मैंने बारहा कहा मानता नहीं। एक मरतबा रसूल ने देख के कहा बीबी ये तो आपके घर का मन की मंजिलत है।

मलक आता है इजाजत चाहता है, वरना ये मलकुल मौत किसी के घर की इजाजत नहीं चाहता। मैं कहता हूँ दुनिया वालों, फरिश्तों से सीखो। हाय वो घर फातिमा का ही था जो शाम गरीबा में आग से जलाया गया। इमाम हसन इमाम हुसैन छोटे हैं, नाना से आखिरी रुख्सत के लिए आए हैं, और रुख्सत करके बाद इमाम हसन के होठों को चूमा है, इमाम हुसैन के गले को चूमा है। छोटे छोटे बच्चे इमाम हुसैन ने एक मरतबा पलट के कहा, अम्मा जरा मेरे दहन को सूंघ लो, कोई बदबू तो आ रही है, क्या बात है? बाबा ने हसन के मुंह सूंघे और हमारी गर्दन को एक मरतबा आवाज दी, पैगंबर ने बेटा इसी बात नहीं है, और जहां से कुर्बानी की मंजिल वो शुरू होगी, एक वो होगा जो जहर खाएगा, एक वो है जिसकी गर्दन पे छुरी चलेगी। उसके बाद पैगंबर अकरम ने फरमाया, या अली वो थोड़ा सा काफूर जो जिब्रील अमीन लेकर आए वो हमें दे दो, हम आज तकसीम कर ले। तो काफूर आया, पैगंबर अकरम ने थोड़ा हिस्सा लिया, थोड़ा हिस्सा अली को दिया, थोड़ा हिस्सा बीबी फातिमा को दिया, आखिरी हिस्सा इमाम हसन को दिया, काफूर था तो एक और जवाब। इमाम हुसैन ने कहा, नाना जान क्या मेरे लिए काफूर नहीं है? अरे क्या लिखा है अरबाब मकातिल ने पैगंबर के जबान हाल से, जान मन गमगी मशाओ रूजे शहादत दूर नीस, कुछ राह खुदा रा हाजते कम।

ये अपनी ताकत पे नहीं लड़ रहे हैं, ये रसूल की सीरत की बिना पे लड़ा जा रहा है। जब दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ आए और आपके पास ताकत ना हो तो ताकत को तकसीम कर दिए। हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह को क्यों तैयार किया? किस बॉर्डर पे? हिजबुल्लाह इसराइल के बॉर्डर पे। आधी ताकत आ गई हिजबुल्लाह को रोकने के लिए, आधी ताकत चली गई फिलिस्तीन के मसले पे। ये फिलिस्तीन को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? ताकि दुश्मन कमज़ोर हो, इतना कमज़ोर हो, इतना कमज़ोर हो कि हमारी तरफ मुतवज्जे ही ना होने पाए। ये है हमारे रसूल की सीरत। ये हकीम है रसूल, ये वो रसूल नहीं है कि जिसकी बीवी ने एक लिस्ट बना के दी कि जाके खाने का सामान लेके आइए और मुसलमान कहते भूल गया। भूलने वाला रसूल ये काम नहीं कर सकता, इतना कमज़ोर रसूल ये काम नहीं कर सकता। जिसको अपने घर के सिस्टम के बारे में मालूम ना हो वो उम्मत की रहनुमाई क्या करेगा? रसूल की ज़िंदगी में है, पूरी ज़िंदगी रसूल को किसी ने सलाम नहीं किया, पूरी ज़िंदगी सलाम नहीं किया। लोग पहले से प्लान बना के दीवार के पीछे छुप जाते थे कि जैसे ही रसूल इधर से गुजरेंगे हम फौरन सलाम करेंगे। रसूल दीवार के पीछे से लोगों को देख के सलाम करते थे। ये अल्लाह का रसूल है, रहमत वाला रसूल, बरकतों वाला रसूल। इस रसूल की सीरत पे अगर अमल करें तो इसराइल क्या, दस इसराइल आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उन्होंने दुश्मन से लड़ने का तरीका हमको बता दिया तो बस काफ़ी है हमारे लिए, बस हमको उनकी सीरत को फॉलो करना है। बस मैंने बात को ख़त्म किया। सही, ये रसूल अकरम की शबे वफात है। अजीब मजलूमियत है रसूल अकरम की, अजीब मजलूमियत है रसूल की। आप तारीख़ उठा के देखें किस तरह रहमत से पेश आया है मेरा रसूल। कि जब हलीमा दाई के पास रसूल अकरम गए थे दूध पीने के लिए, अभी एक पूरा किस्सा है, इसकी भी तहलील होना चाहिए, इसका तजिया होना चाहिए। कि बच्चा 2 साल माँ का दूध पीता है, रसूल अकरम हलीमा के पास 5 साल क्या कर रहे थे? कौन ऐसा दादा है जो अपने यतीम पोते को एक दूसरी औरत के हवाले कर दे 5 साल तक? इसमें भी रीज़न है, कभी ज़िंदगी रही तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। लेकिन जब हलीमा के पास रहते थे तो हलीमा की एक बेटी थी जिसका नाम तारीख़ ने लिखा शीमा, वो बकरियों को चराने के लिए लेके जाती थी। बस बात को ख़त्म कर रहा हूँ मैं। एक दिन हलीमा ने देखा कि बेटी बकरियों को लेके गई नहीं चराने के लिए। हलीमा ने कहा बेटे तुम गई क्यों नहीं चराने के लिए? काम्मा मैं अकेले नहीं जाऊँगी, ये बकरियाँ मुझे बहुत तंग करती हैं, इधर उधर भाग जाती हैं, मैं उनको पकड़ नहीं पाती, कोई मेरे साथ जाए तो मैं जाऊँगी वरना मैं नहीं जाऊँगी। तो हलीमा ने कहा बेटा कौन है हमारे पास, तुम्हारे अलावा कोई और तो है नहीं, कौन जाएगा? कहा ये मोहम्मद को भेज दीजिए हमारे साथ। रसूल अकरम छोटे से थे गोद में। कहा बेटा कैसी बातें करती हो, ये खुद ही गोद में रहता, तुम्हें इसे गोद में लेना होगा, अगर तुम इसको गोद में ले लोगे तो बकरियों की कैसी हिफाजत करोगी? कहा अम्मा अगर इसको देंगी तो मैं जाऊँगी, अगर नहीं दिया तो मैं नहीं जाऊँगी। कहा बात क्या है, मसला क्या है, इतना पीछे पड़ी मोहम्मद को लेके जाऊँगी? कहा अम्मा एक दिन मैं अपने भाई को लेके गई थी तो मैंने 3 चीज़ें देखी। कहा क्या देखा? कहा पहली चीज़ तो ये कि एक राहिब मुझे मिला, मेरे भाई को देख के कहता कि एक दिन ये बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तब माँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मेरे भाई के बारे में ऐसी बात कही। कहा और दूसरी बात, कहा अम्मा अजीब चीज़ मैंने देखी कि जब मैं अपने भाई को लेके गई तो मैं जहाँ जाती थी मेरे भाई के सर पे एक बादल था जो साया किए हुए था। मैं गौर कर रही थी कि मेरे ऊपर सूरज की धूप नहीं पड़ रही थी, अब जो सर उठा के देखा, देखा क्या जिधर जा रही उधर बादल साया करता चला रहा है। ये रसूल रहमत हैं। तीसरी बात और भी अजीब है अम्मा, जिस दिन मैं अपने भाई को लेके गई थी उस दिन बकरियां इधर उधर कहीं भागी नहीं रही थी, सब अपनी जगह पे हमारे पास खड़ी थी, हमको पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं हुई। देखिए रसूल रहमत को देखें, रहमत की इंतहा है रसालत की। और जब रसूल जवान हो गए और जंगे करने लगे तो एक जंग में इसी शीमा को पकड़ा गया, इसको कैदी बना के लाया गया इसके कारवान के साथ। तो इसने मुसलमानों से कहा कि मुझे तुम्हारे रसूल से मिलना है, मैं उनकी बहन हूँ। बस मसाब के पहलू पे आ गया मैं। लोगों ने आके बताया कि वो आपकी बहन आपसे मिलना चाह रही है। उसने कहा मेरी तो कोई बहन नहीं है। कहीं वो कह रही है कि मैं तुम्हारे रसूल की बहन हूँ। कब बुला के लाओ? एक ज़माना गुजर गया था, वो बूढ़ी हो गई थी। तो जब शीमा आई तो उसने खैरियत का पहचाना नहीं भाई आपने मुझे, मैं शीमा हूँ हलीमा की बेटी। कहा अच्छा शीमा तुम यहाँ कैसे? कहा आपके लोग मुझे कैदी बना के ले आए। रसूल अकरम ने कहा कि ऐसा है कि तुम मेरी बहन हो,

तो अगर तुम मेरे साथ यहाँ रुकना चाहती हो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठाता हूँ रुकने के लिए, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, हम तुमको आज़ाद करते हैं। रसूल की बहन थी, जानती थी रहमत वाला रसूल है, कहा भाई जाऊंगी तो मैं अपने कबीले में वापस, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी। देखिए अगर मैं खुद चली गई तो लोग क्या कहेंगे, ए हलीमा की बेटी तू अपने भाई से अपनी जान बचा के चली आई और दूसरे लोगों को फंसा के आ गई। भाई जब तक ये पूरा कबीला नहीं जाएगा मैं नहीं जाऊंगी। जानती थी रहमत से बात कर रहे, रसूल रहमत से बात कर रहे। रसूल अकरम ने कहा ए हलीमा की बेटी तू चूंकि मेरी बहन है तेरे सदके में मैंने सबको माफ़ किया, पूरे कबीले को माफ़ कर दिया। रसूल अकरम ने कहा जाओ तुम्हें जहाँ जाना हो चले जाओ। उसके बाद अपने दोस्त से रिदा को उतारा, ज़मीन पे बिछाया और कहा बहन कुछ देर यहाँ बैठ जाओ। शीमा को वहाँ पे बिठाया। यही होता है अजीज़, जिसके भाई होते हैं वो अपने बहनों के नाज ऐसे ही उठाते हैं। ए रसूल अल्लाह एक रिदा करबला के मैदान में लेके आइए। एक बहन है जो 11 मुहर्रम को भाई के जनाजे से गुजर रही है, अगर एक चादर मिल जाए बहन को तो भाई को कम से कम कफन दे दे। बस अजीज़ो ये शब कयामत की शब है। अहले बैत के ख़ानदान में 3 जनाजे ऐसे हैं जो 2 दिन या उससे ज़्यादा रखे रहे और दफनाए नहीं गए। पहला जनाजा रसूल अकरम का, बाज़ रवायतें कहती हैं 2 दिन, बाज़ रवायतें कहती हैं 3 दिन, यानी मंडे को रसूल अकरम की वफ़ात हुई नमाज ज़ुहर के बाद, मंडे ट्यूसडे वेनसडे की रात में रसूल अकरम को दफनाया गया। ये अहले बैत के फ़र्द का पहला जनाजा है जो 3 दिन तक रखा रहा। दूसरा हुसैन इब्न अली का जनाजा जो करबला में बेगुस्लो कफन पड़ा रहा। और तीसरा जनाजा उस गरीब बगदाद का है इमाम मूसा काज़िम का, जो बगदाद के पुल पे रखा था और जालिम ये कह रहे थे ए राफिजियों ये तुम्हारे इमाम का जनाजा है। इतना रहमत वाला रसूल जब दुनिया से जा रहा हो तो उसके साथ इंसाफ ये कि उसके जनाजे को छोड़ के लोग हुकूमत बनाने चले गए। अल्लाह अकबर। कल रात की मजलिस मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब ज़हरा अपने बाबा को बहुत चाहती थी, हर बेटी चाहती है, लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा को कुछ ज़्यादा उनसियत थी अपने बाबा की। और जब जैसे ही रसूल का आखिरी वक्त आया तो जनाब फातिमा ज़हरा हट नहीं रही थी बाप के पास से, जा नहीं रही थी बाबा के पास से, अपने जानू पे बाबा के सर को रखे हुए थी। और बाबा सो रहा था, किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई कि मैं रसूल से मिलना चाहता हूँ। शहज़ादी ने कहा नहीं मिल सकते, मेरा बाबा आराम कर रहा है। आने वाला खामोश हो गया। दोबारा उसने थोड़ी देर के बाद आवाज़ लगाई कि मैं रसूल से मिलना चाहता हूँ। फिर शहज़ादी ने कहा नहीं मिल सकते, मेरा बाबा आराम कर रहा है। तीसरी बार जब उसने आवाज़ बुलंद की तो शहज़ादी की आँखों से आंसू निकल आए। वो जो आंसू आँखों से गिर के रसूल के रुखसार तक आए तो रसूल की आँखें खुल गईं। कहा बेटी रो क्यों रही हो, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ। कि बाबा न जाने कौन शख्स है जो बार बार आपसे मिलना चाहता है और मैं उसको इजाज़त नहीं दे रही, मैं ये कह रही मेरा बाबा अभी आराम कर रहा है। रसूल अकरम आवाज़ देते बेटी जानती है वो जो तुमसे इजाज़त मांग रहा है वो कौन है, वो फरिश्ता है जो किसी के घर आने के लिए इजाज़त का तलबगार नहीं होता। ए बेटी ये तेरे घर का, ये तेरे दरवाजे का शरफ़ है कि तेरे दरवाजे पे अगर मलकुल मौत भी आ रहा है तो इजाज़त लेके आ रहा है। मैं कहूँगा रसूल अल्लाह अभी आप ज़िंदा हैं, अभी आप बाहयात हैं, आपकी हयात में अगर फरिश्ता भी आता है मलकुल मौत भी आता है तो इजाज़त लेके आता है। या रसूल अल्लाह आपके जाने के बाद इस घर पर क्या गुजरेगी ये फ़ातिमा से पूछिए। अल्लाहु अकबर। अरब के उस माहौल में ये तरीक़ा था कि जब किसी के घर में मौत हो जाती थी तो 3 दिन तक उसके घर में खाना नहीं बनता था, जो पड़ोसी होते थे वो खाना लेके आते थे। रसूल के 3 दिन के इंतकाल के बाद मोहल्ले वालों ने देखा कि बनी हाशिम के घर से धुआं उठ रहा है। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अरे अभी रसूल को मरे हुए 3 दिन नहीं हुए और ज़हरा के घर में चूल्हा जलने लगा, चलो चल के देखते हैं ये चूल्हा क्यों जल रहा है। अब जो आके देखा तो चूल्हा तो नहीं जल रहा था, ज़हरा के दरवाजे पे आग और लकड़ी जमा थी।

पर गिराने का हुजूर शोर वही शोर बाबहता पर हुजूर कहकहों का ठोकरों का दस्तक का हुजूर हुजूर शोर वो दरवाजे के उखड़ने का हुजूर बैन तहे दर हदीस बिजवत का हुजूर बैन वही बैन अल मदद फिजा हुजूर शोर वही शोर ताजियाने का हुजूर हुजूर नील के चेहरे पे सब्त होने का हुजूर शोर वही शोर बैन वही बैन हुजूर जुल्म हुए और बेतहाशा हुए हुजूर अश्क बहे और बेतहाशा बहे हुजूर इस पे भी इस्मत की पासदारी रही हुजूर फिर भी अली को नहीं पुकारा गया हुजूर फिर भी अली को नहीं पुकारा।

बच्चे के फ्यूचर पर माँ को उम्मीद है ना, ये सहारा बनेगा, ये हाथ थामेगा, हमारी मदद करेगा, ये उम्मीद है जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अगर उम्मीद ना हो तो कोई किसान जमीन में दरख्त नहीं लगाएगा। ये दरख्त बड़ा होगा, फल देगा, क्या ये किसान, ये फार्मर उस फल से फ़ायदा उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? ज़िंदगी बाकी रहती है, नहीं बाकी रहेगी। वो सिर्फ उम्मीद है जो फार्मर को काम करने पर मजबूर करती है। उम्मीद को हटा लिया जाए वो किसान भी थक कर सो जाएगा, इसलिए कि उसे कोई उम्मीद और फ्यूचर पर भरोसा नहीं होगा। हज़रत ईसा ने देखा एक सीनियर सिटीज़न, एक बूढ़ा इंसान फार्मिंग कर रहा है, काम कर रहा है, खेती कर रहा है। हज़रत ईसा का परवरदिगार इससे, इसके दिल से उम्मीद को निकाल ले। थोड़ी देर के अल्लाह तबारक व तआला ने होप को उसकी जिंदगी से निकाल लिया। वो फार्मर थक हार कर किसी दरख्त के साए में बैठ गया। फिर हजरत ईसा ने कहा परवरदिगार इसके दिल में उम्मीद को डाल दे, होप को डाल दे। जो ही होप डाली गई, उम्मीद पैदा की गई, फिर वह खड़ा हो गया, कमर पर कपड़ा बांध कर काम करने लगा। काम, अमल, एक्शन उम्मीद का नतीजा है। हमारे पास दुआएं, पुकार, मुनाजातें उम्मीद का नतीजा है। अगर उम्मीद ना हो कबूलियत की, अगर होप ना हो कबूलियत की, कभी बंदा दुआ भी नहीं कर सकता। इसलिए मौलाए कायनात ने दुआए कुमैल में फरमाया, परवरदिगार हमारे पास दो ही तो चीज़ें हैं, एक उम्मीद है, दूसरे आंसू हैं। हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक उम्मीद और वरहम, क्या है, मन रासो मालेहिर रजा। परवरदिगार रास माल कहते हैं अरबी जबान में, कैपिटल, हमारी पूंजी। परवरदिगार मेरा कैपिटल मेरी उम्मीद है, और मेरा सरमाया और मेरा वेपन जो है मेरे आंसू और गिरिया है। दो ही चीज़ें हमारे पास हैं। अगर उलमाए कराम ने जो उरफा हैं वो कहते हैं भी वो दो चीज़ें भी हमारी नहीं है, अल्लाह की दी हुई हैं। हम समझते हमारी उम्मीद है, उम्मीद भी दिल में डालने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। आयतुल्लाह जवादी अमौली कहते हैं सिलाहुल बुका, गिरिया हमारा वेपन है, गिरिया हमारा असलहा है। जब हम दुआ के लिए बैठते रोने लगते हैं तो पता चलता वो भी हमारा नहीं है, उसने तौफीक दी है तो आंख से आंसू निकल रहे हैं। उसने तौफीक दिया तो आंसू निकल, वो भी हमारा नहीं है। हम समझते हैं हमारी हमारी चीज़ें, हमारा कैपिटल उम्मीद है और हमारा वेपन जो है वो आंसू। दो ही चीज़ें हमारे पास हैं, दोनों हम अल्लाह की बारगाह में रखते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल करता है। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, इस होप को बाकी रखना बहुत ज़रूरी, होप ऑफ चेंज, सिचुएशन बदलेंगे, हालात बदलेंगे, इस उम्मीद के साथ इंसान को ज़िंदगी गुजारना है। जिसके अंदर अल्लाह से उसकी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं वो कभी परेशान नहीं होता जी, वो कभी अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं करता, वो कभी दर बदर की ठोकरें नहीं खाता। क्यों? उसके पास ऐसी ताकत मौजूद है जो उसको उसकी हालत को बदलने वाली है। किससे उम्मीद वाबस्ता हो? मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम, आप अच्छा सुन रहे हैं तो एक और सलवत का सहारा दीजिएगा। नहजुल बलागा में फरमाते हैं पांच जुमले ऐसे हैं, पांच स्टेटमेंट्स कहिए, पांच सुनहरी जुमले कहिए, तलाई जुमले कहिए, अगर तुम सारी दुनिया का चक्कर लगाओ ढूंढो तो वैसे पांच जुमले तुम्हें मिलने वाले नहीं है, जो मौला कायनात बता रहे हैं। मौला कायनात खुद कह रहे हैं नहजुल बलागा में, अगर सैर करो, सफ़र करो, ट्रैवल करो ज़िंदगी भर, इन जुमलात को ढूंढने के लिए ऐसे जुमले तुम्हें नहीं मिलेंगे। अगर कोई बता सकता है तो वाली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बता सकते हैं। सब मिल के सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो पांच जुमले कौन से? जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ ताकि सब्र और उम्मीद के दरमियान जो रिश्ता है वो रिश्ते को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मौला कायनात फरमाते पहला जुमला, सिवाय अल्लाह के किसी से उम्मीद न लगाना। जी जाहिर सी बात है हमारी जो उम्मीदें होती हैं वाबस्ता हो जाती हैं, कभी माल से, कभी दौलत से, कभी हुकूमत से, कभी दूसरों से, कभी रिश्तेदारों से, थोड़ा बहुत हम आस लगा बैठते हैं, उम्मीद लगा बैठते हैं। मौला कायनात फरमाते हैं नहीं, ला यरजु अहदुन इल्ला रब्बा, सिवाय अपने रब के किसी और से अपनी उम्मीदों को वाबस्ता ना करना, वरना तुम मायूस हो जाओगे। इसलिए अक्सर लोग इसलिए मायूस हो जाते हैं कि वो ताकत से वाबस्ता हो जाते हैं, हक से वाबस्ता नहीं होते। मौला कायनात कहते हैं हक से वाबस्ता हो जाना, इसलिए कि हक से बड़ी कोई ताकत नहीं है। पहला जुमला ये कि तुम अपनी उम्मीदों को वाबस्ता करना, रिलेटेड करना अल्लाह

सब्र पर खत्म किया है। अगर उम्मीद और सब्र दोनों हमारी जिंदगी में जमा हो जाएं, जिंदगी कामयाब, हाल भी अच्छा होगा और हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुरान मजीद में, क्या मेरे बंदो, ऐ मेरे रसूल, मेरे गुनाहगार बंदों से कह देना, क्या कह देना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। अल्लाह की रहमत बिखरी हुई है, हमें रहमत ईजाद करने की जरूरत नहीं है, हमें रहमत तलाश करने की जरूरत है। रहमत तलाश करो, ढूंढो, हमारा काम ढूंढना है। और आज की जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, सारे ढूंढते हैं, ईजाद नहीं करते, वो ढूंढना उनका काम है। रहमत को तलाश करो, बिखरी हुई है रहमत अल्लाह तबारक व तआला की। कभी इस्तग़फ़ार से तलाश करो, कभी सजदे से तलाश करो, कभी सदक़े से तलाश करो, रहमत परवरदिगार को ढूंढो, तलाश करो, तुम्हें मिल जाएगी। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, मेरी खताएं बड़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इन्नल्लाहा यग़फिरुद्दुनूबा जमीआ। ये दरवाज़ा मस्जिद का क्यों खुला हुआ है, ये इमाम बारगाह का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है, आओ तो सही। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में राज़ो नियाज करना, राज़ो नियाज के लिए लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने दिल के तारों को अल्लाह की रहमत से जोड़ देना, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। अल्लाह अकबर। सो मिल के या अली जी, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم। अल्लाह माफ़ करने वाला भी है और रहमत नाजिल करने वाला भी है। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं मग़फ़िरत के बाद फिर रहमत का तज़किरा क्यों, मग़फ़िरत के बाद रहमत का तज़किरा, अल्लाह माफ़ करने वाला है। यानी क्या, अगर तुमसे गुनाह सरज़द हो गया, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, फिर रहमत का क्या माना है। ना तो ना अल्लाह माफ़ करेगा, बल्कि गुनाहों के नशानात को भी मिटा देगा। गुनाहों के इतना करीम अल्लाह है हमारा, इतना रहीम अल्लाह, इतना गफूर अल्लाह। अगर कोई सिफात परवरदिगार को जान ले, वो कभी अल्लाह का दामन अपने हाथ से छूटने नहीं देगा। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, एक अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हम लोगों के लिए कभी उम्मीद का दामन हाथ से जाने ना देना। चलिए देखिए कि नमूने हमारे पास हैं कि नहीं है। नमूने कुरान मजीद में मौजूद हैं, उसवा कुरान मजीद में मौजूद है। कहाँ पर, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। आप हज़रत सारा के साथ बैठे तशरीफ़ फरमा थे, आसमान से फरिश्ते आए, फरिश्ते आने के बाद खुशखबरी दी हज़रत इब्राहिम को कि आपके घर में जी एक लड़का पैदा होने वाला है, आपके घर में विलादत होने वाली है। बशारत दी, ग्लैड टाइडिंग्स फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम को। तो हज़रत सारा ने कहा ये उम्र और ये खुशखबरी, ये एज 100 साल के हो गए थे और आपकी बीवी भी सारा जो वकीम थी, भांज थी, ये उम्र और ये खुशखबरी पहले ही आ जाते हैं। तो एक और खुशखबरी हमें मिल जाती है हज़रत इस्माइल के बाद, हज़रत इसहाक़ की खुशखबरी दी फरिश्तों ने। तो गोया मायूसी की बो आ रही थी इस कलाम में कि ये उम्र और ये खुशखबरी। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा قال لا تقنط من رحمة من يقنط من رحمة ربه إلا الكافرون إلا الضالون। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से वही गुमराह मुंह मोड़ लेता है जो गुमराह होता है, जो डिविएट होता है, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है। वो देना चाहे तो वो उम्र नहीं देखता, वो अता करता चला जाता है, वो अता करता चला जाता है। कहीं ऐसा ना हो आज सब सीनियर सिटीजन दुआ मांग ले जी, सीनियर सिटीजन दुआ भी कर ले सकते हैं ना, कोई ऐब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत फैली हुई है। मैं यकनुत मिन रहमत रब्बी इल्ला दालून, डिविएटेड लोग हैं जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। हज़रत इब्राहिम ने प्रैक्टिकली तौर पे समझाया अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इस एज में हज़रत ज़करिया ने भी दुआ की थी, दुआ की और घबरा गए। पता है कुरान मजीद की आयतें हैं, हज़रत ज़करिया ने दुआ की, हज़रत मरियम की जिंदगी को देखकर आपने दुआ की। दुआ करने के बाद कहा परवरदिगार मुझे भी ऐसा ही एक बेटा चाहिए, ऐसा ही एक औलाद चाहिए जिसके सामने जन्नत के फल आएँ, वो मेरा वारिस बने, मेरे माल का वारिस, मेरे मकाम का वारिस बने। जो दुआ कर ली अल्लाह तबारक व तआला का, ठीक है हम दे देते हैं। फौरन दुआ की और घबरा गए, मैं वो तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। अल्लाह

तबारक हो ताला ने, जब कुछ नहीं था तो हमने तुम्हें पैदा किया, अब तुम तो हो हमारे दरमियान, क्या मुश्किल है। अल्लाह ने तसल्ली दी, घबराओ नहीं, अगर वो देना चाहे तो खल्क करना चाहे उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। मुश्किल आसान आज और कल, जवानी बुढ़ापा हमारे लिए है, अल्लाह तबारक ताला के लिए नहीं है, उसे कोई चीज रोक नहीं सकती है। अल्लाह तबारक, हजरत इब्राहिम ने कहा मैं यकनुत मिन रहमते रब्बी, कभी भी अल्लाह की रहमत से अपने आप को मायूस न करना, वही मायूस होते हैं जो गुमराह हो जाते हैं। पहली मिसाल, दूसरी मिसाल, मैं मंजिल तक पहुंच रहा हूं, घबराइए नहीं। दूसरी मिसाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम।

काम होने वाला है हमारी कम्युनिटी में। मफुंजो या हुसैन जी, एक बेहतरीन काम जो हर साल होता है अरबईन के बाद जी, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, हमारी कम्युनिटी को शरीक होना चाहिए जी। कम से कम देखने के लिए तो आओ, वॉलंटियर नहीं बन सकते तो देखने, हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। जमात ने कहा भी हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमें फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, वो आएँ अपना नाम लिखाएँ। और कुछ लोग ऐसे भी आए वॉलंटियर करने के लिए, कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम एक विजिट तो करो, देखो अरबईन मॉडल को किस तरह कॉपी किया जा सकता है। इससे बेहतर मेरे पास जुमला नहीं है। हम ज़ियारत पर गए थे ना नजफ से करबला, चलकर हमने देखा अरबईन मॉडल किसे कहते हैं। दूसरे की खिदमत करना, दूसरे को पानी पिलाना, तबलीग करना, किसी का हाथ थामना, किसी के इलाज का इंतज़ाम करना जी, जब कुछ ना बन पड़े तो अपना घर खाली करके दे देना, यही तो अरबईन मॉडल था। अरे इस मफूंजो या हुसैन में ये तो अरबईन मॉडल की कॉपी है। चंद दिन ये काम करके देखो किस तरह इमाम की आवाज़ पर हम लब्बैक कहने के हकदार बन जाते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जितना हो सकता है तमाम अपने घर वालों को ले आइए, देखिएगा ताकि एनकरेज हो सकें वो, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले इस मैदान में काम कर सकें। पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, सब्र और उम्मीद, इस उम्मीद के साथ आइंदा हमारा और बेहतर होगा, इन कामों को हम और आगे बढ़ाएंगे। सलाम हो उस रसूल आज़म पर, सलाम हो उस रसूल अकरम पर, जिसने उम्मत से उम्मीद का दामन हाथ से छूटने ना दिया, उम्मीदवार बनाया। तुम कामयाब होगे, वो अंतुमुल आलान, तुम बड़े होगे, अच्छे होगे, कामयाब होगे, अगर ईमान का दामन तुम्हारे हाथ से जाने ना पाए। और उम्मीद इंसान पैगंबर इस्लाम, कितने जुल्म ढाए इस अजीम इंसान पर, इस इंसान ने ना सब्र को हाथ से जाने दिया, ना उम्मीद को जाने दिया। एक बद्दुआ करते तो सारी उम्मत तबाह हो जाती है जी, सारी उम्मत तबाह हो जाती है। ताइफ में इतने पत्थर बरसाए आपकी पेशानी पर, आपके सर पर खून मुबारक आपके बदन से रस रहा था। कितना उम्मीदवार था हमारा नबी, हाथों को बुलंद करके कहता परवरदिगार इन्हें नहीं मालूम है मैं किस चीज की तरफ इन्हें बुला रहा हूं, इन्हें नहीं मालूम है। दंदाने मुबारक को जंगे ओहद में शहीद किया गया, वक्त था बद्दुआ का लेकिन बद्दुआ नहीं की, कौम के लिए कहा इनको नहीं मालूम, इनको हिदायत की तरफ बुला रहा हूं और ये लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं। कितना मजलूम और उम्मीदवार था हमारा नबी, कितना सताया गया हमारे नबी को, गलत अलकाब से पुकारा गया, कभी झूठा कहा गया नऊज़ु बिल्लाह, कभी साहिर कहा गया, कभी शायर कहा गया, कभी मजनून कहा गया, कभी शहर से निकाला गया, मक्का छोड़कर मदीना चले गए जी, कभी आपके रिश्तेदारों को, करीब तरीन रिश्तेदारों को शहीद किया गया, हजरत हमजा को आपकी निगाहों के सामने शहीद कर डाला। हजरत हमजा की शहादत के बाद आपकी आंखों में आंसू देखा लोगों ने, आपको गमजदा किया गया, आपको रुलाया गया। और ये रसूल जब दुनिया से जा रहे हैं तो रसूल वसीयतें करते हैं, गैर कोई जुमला कहता है तो उतनी तकलीफ नहीं होती, जब अपना बज़्म में बैठने वाला एक जुमला कहता है तो दिल टूट जाता है। आखिरी लम्हात में भी रसूल को रुलाया, इन्न रजुल यहजुर, कहने वाले ने कहा ये रसूल को, रसूल पर बखार चढ़ गया है, रसूल के अक्ल पर शक किया गया, कितना गिरिया किया होगा हमारे रसूल ने। इसे किसी बुजुर्ग स्कॉलर ने कहा किसी के इखलास का कभी इम्तिहान ना लेना, सबसे बड़ा इम्तिहान सिंसियरिटी का इम्तिहान होता है। परेशान किया गया रसूल इस्लाम को, अपनी ज़िंदगी का के गम ज़्यादा थे। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बाद, हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद आपने आमुल हुज़्न करार दिया, आपने गिरिया किया है, आपने गिरिया किया, आपके आंखों में आंसू देखे लोगों ने, आपके बच्चे इस दुनिया से गए तो आपने गिरिया किया, हज़रत इब्राहिम इस दुनिया से गए तो आपकी आंखों में आंसू देखे। सबसे ज़्यादा रसूल को जो खौफ था वो आपकी वफ़ात या शहादत के बाद का था। जो लोगों के दिलों में कीना है, जो एनिमिटी है, कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए कई मकामात पर रसूल ने अपने बच्चों की मुसीबत बयान की है। कभी अली की मुसीबत को बयान किया,
कभी फातिमा की मुसीबत का जिक्र किया, कभी

तन की मुसीबत को बयान किया, कभी हुसैन की मुसीबत को बयान किया, कभी जन्नत से जो काफूर आया उसके तकसीम करने की बारी आई तो हमारे रसूल ने गिरिया किया। कुछ काफूर जन्नती काफूर आया, अपने लिए कुछ रखा, अली के लिए कुछ दिया, फातिमा के लिए कुछ, हसन के लिए कुछ। जब बारी हुसैन की आई तो माँ तड़प गई। बाबा मेरे हुसैन के क्या कसूर है। रसूल ने कहा जिसे कफन नसीब ना हो उसे हनूत की क्या जरूरत है। रसूल ने तस्किरा किया, बार बार तस्किरा किया अपने बच्चों की क़यादत का। शायद आखिरी लम्हात से पहले हो रसूल ने अपने घर वालों को बुलाया, अली हो, फातिमा हो, हसन हो, हुसैन को बुलाया, और बुलाने के बाद अपने वसीयत के, अली उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब तेरे सर पे ज़र्ब लगेगी, तेरी रिश मुबारक खून से, सर के खून से भर जाएगी। बीबी के मसाइब का आपने बयान किया, मेरे बाद क्या होने वाला है। और कभी हसन के दहन का बोसा लिया, कभी हुसैन के गले का बोसा लिया, फिर माँ तड़प गई। बाबा हसन के मुंह का बोसा और हुसैन के गले का बोसा क्यों? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मेरे बेटे हसन को जहर दिया जाएगा और मेरे बेटे हुसैन का गला खुन कुंद खंजर से ज़िबह कर दिया जाएगा। पैगंबर इस्लाम ने मसाइब को बताया है, मसाइब को बयान किया, कहा वसीयत में या अली तेरी निगाहों के सामने दो रुकन तोड़ दिए जाएंगे और तू दो मेरे खुशबूदार फूलों की हिफाजत करना। जो तेरे निगाहों के सामने दो रुकन तोड़ दिए जाएंगे, एक मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तेरा क्या हाल होगा, और जब तेरी निगाहों के सामने तेरी जौजा के पहलू पर जलता तेरा क्या हाल होगा। ए अली दो रुकन है, दो सुतून है, एक पैगंबर की सूरत में और एक फातिमा की सूरत में। इसलिए मौलाए कायनात ने दोनों जनाजों पर गिरिया किया है। रसूल के जनाजे पर मौलाए कायनात ने कहा इन कता बे मौत या रसूल अल्लाह मा लम यनक़ता बे मौत अहदन। या रसूल अल्लाह आपके जाने से जो वही का सिलसिला टूट चुका है, किसी और के जाने से नहीं टूटता था, वो सिलसिला टूट गया। गम का इजहार किया मौलाए कायनात ने, गिरिया किया इस सुतून के टूट जाने के बाद। और एक सुतून जो टूटा वो बीबी का सुतून था। बीबी की सूरत में जब रुकन टूटा, मौलाए कायनात ने फातिमा को कब्र में लिटा कर कहा या रसूल अल्लाह जो गुजरा है फातिमा पर, फातिमा से पूछ लेना। और उसके बाद मौलाए कायनात ने फरमा ए फातिमा आज के बाद अली की रातें गिरिया करते हुए गुजरेंगी, आज के बाद अली के आंखों से आंसू कभी नहीं रुकेंगे। ये मौलाए कायनात का खुतबा है नहजुल बलागा में, अली के आंखों से आंसू जारी रहेंगे, बेचैनी की रातें होंगी आज के बाद फातिमा के जाने के बाद। और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अली दो मेरे खुशबूदार रायहानतैन की हिफाजत करना, एक हसन की हिफाजत और मेरे हुसैन की हिफाजत करना। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आपने वसीयत तो फरमा दी मेरे हसन की हिफाजत करना, मेरे हुसैन की हिफाजत करना। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह ज़रा आइए आपके हसन के जनाजे पर तीर और हुसैन का जनाजा, अरे तीरों पर मुअल्लक रहा। हसन की मुसीबत अदीम है, मेरी वायत ये शब हसन के नाम से भी मंसूब है। अरे बदन पर तीर बरसाए गए लेकिन हसन ने कहा था ला यौमा कयौमे कया अबा अब्दिल्ला, जो मुसीबत हुसैन तुझ पर आने वाली है वैसी मुसीबत किसी पर नहीं आएगी और ना आई है। फर्क क्या है, कई मसाइब आपने सुने हैं, बस अरबईन का मौका एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए। क्या फर्क है दोनों की मुसीबत में, दोनों का बदन तीरों से जुड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है हसन की शहादत के बाद जनाजे पर तीर लगे लेकिन हुसैन अभी जिंदा थे। अरे बदन तीरों से इतना चलने

0: Baba. बाबा अम्मी अभी तक नहीं आई।
1: क्या कहा?
0: अम्मी अभी तक नहीं आई, मुझे और हातिफ को उनके साथ जाना था लेकिन नहीं आई।
1: कहां से वापस नहीं आई?
0: घर पे नहीं है।
2: जुदाई सच में एक जख्म है बेटी, लेकिन जख्म चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, वो एक न एक दिन भर ही जाता है।
0: इस जुदाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
2: तुम ही कह रही थी कि उसके हाथ में खत नहीं था, तो फिर ये बेखबरी और बेकरारी किस लिए? पूछा नहीं किसी से?
3: क्यों नहीं, हर दिन पूछा मैंने, लेकिन किसी ने कभी भी एक लफ्ज नहीं बताया। बस शुरू में एक बात कही कि वो खिलाफत के खिलाफ साजिश कर रहा था।
0: दर्द फिराक की ताकत नहीं है मुझ में।
2: जब कभी भी तुम्हें जुदाई का एहसास हो तो मेरी सरजनिश करना, मुझ जैसे लोगों को माफ करना कि हमारी खामोशी की वजह से ही तुम्हारा ये हाल हुआ है।
0: आपका क्या कसूर?
2: सब हमारी ही गलती है, वरना उनमें से कोई भी, यहाँ तक के खलीफा भी, हमसे टकराने की जुर्रत ना करते।
3: खुदा तब तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को तब्दील ना करे। हालात खुद बदलने पड़ते हैं। खुदाया मुझे जिंदा रखना ताकि मैं अपनी आंखों से उनकी खिलाफत की तबाही देख सकूं। फरजंदे अली की दावत के लिए काबिलियत की ज़रूरत थी जो हम में नहीं थी।
2: देखो वो चाहे अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, नूरे खुदा बुझने वाला नहीं है। इंशाल्लाह इमाम आएंगे और अदालत कायम होगी
0: इंशाल्लाह।
4: आप लोग तो खलीफा की मुखालफत की बात ऐसे कर रहे हैं मानो उस घर में जो लोग रह रहे हैं वो मुसलमान ही ना हो।
2: शाबाश बेटी, तुम मेरी बात समझ गई हो। जो कोई भी जुल्म के खिलाफ खामोश हो वो मुसलमान।

0: तो क्या इंसान भी नहीं हो सकता?
1: तख्त खिलाफत पर बैठा हुआ शख्स जो भी हो, वो चाहे चोर और उच्चक का ही क्यों ना हो, उसकी इताअत वाजिब और उसकी मुखालफत हराम है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रही हूँ?
2: इन मासूम बच्चों को जरा देखो तुम, आखिर उन्होंने क्या जुर्म किया था जो ऐसी सजा मिली है? क्या कसूर है?
1: इंशाल्लाह वो जल्दी वापस आ जाएंगे, आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी खलीफा के खिलाफ कयाम करने निकले थे। हराम काम करते हैं और फिर उसके अंजाम से भी परेशान होते हैं।
3: कौन सा हराम बहू, और किस काम के अंजाम को परेशान बोल रही हो? सिप्ते पैगंबर की दावत?
1: हुसैन रसूल अल्लाह के अजीज हैं और हम पर उनका एहतराम वाजिब है, लेकिन आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया था?
3: क्या किया?
1: बाबा ने बताया कि सारे उलमा ने उनके कयाम को फितना बताया है, और इतना ही नहीं, उनकी हिमायत करने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने हमारे दरमियान इख्तलाफ डाल दिया।
2: उसे इख्तलाफ नहीं कहते, हक को बातिल में जुदाई डालना कहते हैं।
1: हुसैन जो कर रहे हैं वो हक है? आपके अलावा सारे उलमा और अंसार गलत है? बोलिए। बैत का इनकार दीन से खारिज होने के बराबर है।
3: दीन? कौन सा दीन? दीन तो अली थे और अब उनके फर्जंद हुसैन हैं।
1: ये कोई मीरास नहीं जो बाप से बेटे को मिलेगी।
0: शाबाश बेटी, सही कहा। यही यजीद जो तख्त पर बैठा हुआ है, उसे भी तो उसके बाप ने बिठाया है ना।
3: खाक हो उस शख्स पर जो हुसैन और यजीद का मुआजना करे।
0: अली मिंबर पर जाते थे और कहते थे कि लोगों, जिसे भी मेरी हुकूमत पर एतराज है वो आगे आए बयान करे। वही अली जिनकी अदालत पर सारी दुनिया हैरान थी। हुकूमत पर तनकीद हुसैन की बाबा के जमाने में हलाल थी, लेकिन आले यजीद के यहाँ हराम है।
3: जुल्म के खिलाफ खामोश रहना, ऐ मेरी बेटी, मुजाहिद को भी दुश्मन बना देता है।
1: जुल्म? कौन सा जुल्म? बा खुदा मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
4: समझ रही हूँ, तुम सिर्फ अमन और बद अमनी को देखती हो। एक मर्तबा अपने माजी पर नजरें डाल लो, तुम हक नाहक का फर्क समझती हो ना। रुक जाओ नायला।
1: मेरे बाबा ने जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला मुझसे ले रहे हो?
4: मैं बदला ले रहा हूँ?
1: और क्या कर रहे हो तुम?
4: बहस तुमने ही शुरू की थी।
1: गलत मैंने किया?
4: तुम ही ने बात को बढ़ाया और खामोश नहीं हुई।
1: तुमने क्या किया?
4: क्या किया?
1: बस बैठे बैठे मुझे देख रहे थे।
4: तुम्हें उनसे क्या मतलब?
1: मजा आया होगा मेरी बेइज्जती।
4: उन्होंने अपना अकीदा जाहिर किया, उसमें तुम कहां से आ गई?
1: मैं तुम्हारी बीवी हूँ या नहीं? अगर हूँ तो मेरा साथ दो, चाहे मैं गलत ही क्यों ना हूँ।
4: नायला, नायला, रुक जाओ। तुम्हें उसी दिन से मेरे और घर वालों के अकीदे का पता है जब तुमने दिल की बात की थी। वैसे ही मैं अपने घर वालों की वजह से परेशान हूँ, मेरी परेशानियां और मत बढ़ाओ।
1: मैं अपनी बात कह चुकी हूँ, तुमने मेरे बाबा की शर्त को कबूल किया था। अलवी अपने रास्ते पे हैं और तुम अपने रास्ते पे, बात खत्म।
4: ला इलाहा इल्लल्लाह।
5: मुझे बहुत बुरा लगता अगर तुम देर से आते। बहुत अच्छा किया तुमने जो आ गए। तुम्हें पता चल जाए ना कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए क्या सोचा है तो तुम्हारे तुम्हारे होशो हवास उड़ जाएंगे। सच में
4: सब खैरियत तो है?
0: सब खैरियत है, हमारी सोच से भी बेहतर। मक्के के एक कारवां को मैंने दो लोगों की जगह रखने को कहा है। शायद इस हज और ज़ियारत की वजह से तुम्हारा यह रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो।
1: शुक्रिया बाबा, आपने जो मेरी आरजू पूरी कर दी, खुदा का शुक्र है। इतनी परेशानियों के बाद इस सफर से ज्यादा अच्छा और भला क्या हो सकता है?
0: तुम खुश नहीं हो?
4: असल में मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, सुन के हैरान हो गया हूँ।
0: हज जो जियारत का मौसम है ऐ बंदे खुदा, मेरे कहे बगैर ही तुम्हें उस बारे में सोचना चाहिए था। कहाँ है?
2: कौन?
0: अगर उसे इतनी अकल नहीं है तो आपको समझना चाहिए, शोहर और बच्चों के बगैर रुकना ठीक नहीं।
1: बिस्मिल्लाह।
0: तलमा!
2: किसे ढूंढ रहे हो नईम? तुमसे किसने कहा कि तलमा यहाँ आई है?
0: नहीं, वो तो जाने वाली थी।

0: हो सकता है शाम की तरफ चली गई हो।
1: उसके बच्चे और सारा सामान तो घर पर है, फिर शाम क्यों जाएगी?
2: आखिरी बार मैंने उसे शादी में देखा था, घर नहीं लौटी क्या अभी तक?
1: कल रात मेरी हालत ठीक नहीं थी, अपने होश में नहीं था। घर पहुंचा तो सुबह तक सहन में ही सोता रहा।
0: कूफे के जर्रे जर्रे को छानो और उसे ढूंढो, और जब तक वो ना मिले वापस नहीं आना। तिजारत खाने की फिक्र ना करना, मैं और हिलाल देख लेंगे।
2: जरूर वापस आ जाएगी, खुदा पर भरोसा रखो।
0: खादिम,
1: आतिफ, अपने भाई का ख्याल रखना।

0: डरो नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं। बहुत अच्छा किया। जिस शहर में तुम्हारा शौहर बदनाम हो वहां रुकना मुनासिब नहीं। ये लो, लो। आज के बाद जहां भी जाओगी
1: आगे बढ़े
0: हमारे खानदान का जिक्र जरूर करना कि हम खान के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं।
1: हरकत करें,

0: से सिर के हाथ का मेरी तो हंसी छूट गई। चलो चलो
1: सलाम नाइम भाई, कपड़ों के बारे में कुछ बात करनी थी।
0: नहीं अभी नहीं, बात है। इससे हमें काफी फायदा होगा।

0: सारे शहर में फैल जाओ, कूफे की गली कूचों की खाक छान मारो, जिसके बारे में भी शक हो उसका नाम मुझे बताओ, इसे रखो। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, निकलो, निकल जाओ। खामोशी के साथ काम करना, शहर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि नईम की बीवी उसे छोड़कर गई है, समझ गए?
1: हम उन्हें ढूंढ लेंगे।
0: इसे ले जाओ, आपस में तकसीम कर लो, और जो भी पहले खबर ले

0: जीन जाने वाला माल का इसे कूफे में भेजने में इतना वक्त लगता है कि इसके लिए पैसा और वक्त खर्च करने का कोई फायदा नहीं। देखा इन सुस्त और काम चोरों को, यही चीज तबाह कर देती है। माजिद, ध्यान से लोगों को सर पर नहीं चढ़ाना, उन्हें उनका हक लौटाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा एहसान जताते हुए लौटाओ ताकि उनका सर हमेशा झुका रहे। सफर का खर्चा है,
1: मेरे पास जरूरत के लिए काफी है। अगर इसे लूंगा तो बोझ बन जाएगा मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जो लड़की इस वक्त तुम्हारे साथ है वो अहद की लड़की है बेटा। बहुत खर्चे हैं उसके, बहुत नाजो नखरे में पली है, उसका सब कुछ बदल गया है। जिंदगी, ओढ़ना, बिछौना, अकीदा और इबादत सदका नहीं है, अपनी मोहब्बत की कमाई समझ कर रख लो। अच्छी जिंदगी जियो। मैं नायला की जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।

0: खुदा की कसम, अगर तुम हनीफ को बेटे ना होते तो मैं माफ कर देते।
1: जो करना है करो, लेकिन अली पर लान क्यों करते हो? बहुत बस, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और मारो, मारो उसे, और मारो।
0: जब तक जिंदा हो तब तक हमारे दुश्मन हो।

0: अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो?
1: मैं तो तैयार हूँ, सब कुछ किया पर वो नहीं आ रहा, मेरी बात ही नहीं सुनता।
0: किसी काम के नहीं हो तुम। अलमान क्या है, कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गए हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जहन्नुम तो नहीं जा रहे हो ना? उठो चलो, देर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
2: मैं नहीं जाऊंगा।
1: अगर चलोगे तो दादाजी की तलवार चुपके से उठाएंगे और दोनों मिलकर खेलेंगे।
2: अंधे हो, देखा नहीं वो हिलाल को तोहफे में दे दी है?
1: शायद हिलाल भी आ जाए।
0: रुकना है, रुक जाओ, सड़ो जहन्नुम में। कुछ देर बाद जब अंधेरा होगा और भेड़ियों की आवाजें आने लगेंगी और भूख के मारे तुम्हारी जान निकलेगी, तो फिर तुम्हें दादा के घर की कीमत पता चलेगी।

0: चलो हमारे साथ।
1: कसम से मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस यहाँ रुककर अम्मी का इंतजार करूंगा।
0: तलमा आते ही पहले तुम्हें ढूंढेगी, फिर चाहे तुम यहाँ रुको या अपनी फूफी के घर रुकना चाहो। चलो
1: छोड़िए मुझे, मैं नहीं जाऊंगा।
0: तो क्या करूं, मेहंदी पसंद है तुम्हें? मेहंदी पसंद है ना इसे? वादा करता हूँ तुम्हारे लिए मेहंदी ले आऊंगा तुम्हारे
1: नहीं
0: हाथों।
1: चाहिए मुझे मेहंदी भी नहीं चाहिए।
0: क्यों?
1: डर लगता है।
0: किससे डर लगता है?
1: दादा से डर लगता है।
0: दादा ने शादी में तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे सर पर सिक्कों से सदका उतारा था और नाचे थे। क्या तुम्हें पता नहीं कितना चाहते हैं वो तुम्हें? शादी में गए थे ना तुम?
1: मुझे नहीं जाना था शादी में, अम्मी ने जबरदस्ती भेजा, कहा बहुत काम है, इसीलिए राजी हुआ मैं।
0: क्या फूफी से नहीं मिलना चाहते?
1: मिलना है, लेकिन दादा।
0: दादा क्या?
1: हमेशा मुझ पे चिल्लाते रहते हैं आपकी तरह। माँ इसीलिए चली गई है, आपकी और दादा की वजह से। यकीन नहीं हो रहा है ना हतीफ, तुम बताओ।
0: चिल्ला रहे थे कब?
2: इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? तुम तो सामान लेकर चले गए थे ना, तो अलवियों के मोहल्ले में क्या कर रहे हो?
3: हज पे जा रहा हूँ।
2: खुदा की पनाह में।
3: जाने से पहले आपसे मिलने आ रहा था।
2: जिस दिन अली पर लानत की थी उसी दिन सोच लेना चाहिए था। खुदा के बंदों ने ये हाल कर दिया है तुम्हारा, सोचो खुदा तुम्हारे साथ क्या करेगा।
3: मैंने कभी लानत नहीं की।
2: सारे शहर ने तुम्हारी आवाज सुनी थी, तुमने नहीं सुनी?
3: मैंने कभी जबान से लानत नहीं की, जो भी कहा वो तकिया था।
2: या तो मार की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या तुम्हें तकिया का मतलब ही नहीं पता।
3: ये मामला मेरे और ईमान के दरमियान है। बदनाम जरूर हुआ हूं मैं, लेकिन मैंने नायला की जान बचाई है। अगर आपके मसलक में इसे गुनाह कहते हैं, हाँ तो मैं गुनाहगार हूँ। हमारा मसलक अलग नहीं है।
2: जिस चीज ने तुम्हें अंधा कर दिया है उसे इश्क कहते हैं। इमाम को अपनी हवस का बहाना बनाया तुमने, ताकि आहद की बेटी को भी हासिल कर लो और सीना चौड़ा करके ये भी कह सको कि तकिया करके तुम अम्मार बन गए।
3: मेरा हिसाब किताब खुदा पर छोड़ दे। जिस जहन्नुम में आपने मुझे फेंक दिया है वहां खुदा भी है, जिसकी रहमत और करम आप जैसी नहीं है।
2: तुम हज पे जा रहे हो ना?
3: आखिर आज तक मेरी वजह से आपको क्या परेशानी हुई है? ये नाराजगी और गुस्सा छोड़ दीजिए, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
2: मुझे क्या परेशानी है? पूरे शहर की लानत और मलामत झेल रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से शहर में किसी ने भी मेरे खत पर दस्तखत नहीं किया। खुदा और बंदों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे।
3: कौन सा खत?
2: मैंने फिर खत लिखा है,

0: कैसे माफी मिलेगी मुझे? जब तक माफ नहीं करोगी मैं यहां से जाऊंगा नहीं।
1: उस हद को उसकी मंजिल तक पहुंचा दो, शायद शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं।

0: नईम हर जगह अपनी बीवी को ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिली। वालिया का भी कुछ पता नहीं है। हजार बार मैंने उसके बारे में सोचा। जुनैद का कारनामा भी कोई जाती इंतकाम नहीं था, उसके पीछे भी तलमा का हाथ था। उसी ने जुनैद को भड़काया है
1: शायद, लेकिन मैंने शादी में औहद को देखा कि उसने अपने गुलाम को कोई इशारा किया और फिर गुलाम ने वालिया के कान में कुछ कहा। वालिया जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकल गई। मैंने उसका पीछा किया तो वो तिजारत खाने की तरफ जा रही थी। मैं काफी देर वहां खड़ी रही पर वो बाहर नहीं आई। वापसी में मैंने गुलाम और तलमा को उसी तरफ जाते हुए अपनी आंखों से देखा था। मैंने उनका पीछा किया और छुप कर देखा तो वालिया हैरान और परेशान चीख चीख कर कह रही थी कि मैं कातिल नहीं हूं। मैंने अपने कानों से उसे कहते हुए सुना था कि ससुर और बहू की लड़ाई में मेरा क्या लेना देना। मुझे लगता है औहद ने तलमा का कत्ल करवा दिया है। मेरे अजीज भाई, हमें उस खानदान से सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं मिला। अब तुमने वहां शादी कर ली है, तुम्हें मुबारक हो, लेकिन उनसे रफ्तो आमद और खाना पीना अलग कर लो। उनसे जितना दूर रहोगे अच्छा रहेगा।

0: आप शादी में धर्मा को बुलाने पे क्यों इसरार कर रहे थे? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है?
1: जब तुम्हें होश आ जाए और इंसान बन जाओ, फिर आ जाना मुझसे बात करने के लिए।
0: मैं होश हुआ हूँ, अभी बताइए मुझे आपके दरमियान क्या चल रहा था जो मुझे पता नहीं था। मैंने पूछा क्या बात है?

0: अच्छी तरह मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अपनी बीवी को तलाश कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें उसकी अकल ठिकाने लगानी चाहिए थी, जो तुमने नहीं किया इसलिए मैंने ठिकाने लगा दिया।
1: क्या
0: तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी, जो मैंने नहीं होने दिया।
1: बर्बादी। तो कहाँ ठिकाने लगाया, बताइए मुझे, मेरी बीवी कहाँ है?
0: मार दिया उसे। हाथों पर उसका गंदा खून नहीं लगने दिया, उसी से यह काम करवाया जिसके शोहर को तुमने नायरा को मार डालने के लिए भेजा था। अपने शोहर से बेहतर निकली हो तुम, बेफिक्र रहो, औहद के बेटे के लिए तलमा से भी अच्छी लड़कियां।

0: क्या बात है, बुद्ध की तरह क्यों खड़े हो? अच्छे से तलवारबाजी करो।
1: अभी बताता हूँ तुम्हें कि तलवार कैसे चलाते हैं। डरपोक कहीं का, ये ले।
2: क्या कर रहे हो अलवान? दिमाग खराब हो गया क्या? भाई को मारोगे?
0: देखिए ना बाबा, क्या हो गया इसे? ना मुझे तलवार चाहिए और ना ही भाई।
2: कहा था तलवार को म्यान से बाहर नहीं निकालना। उठाओ, इधर आओ, इधर। तोहफा पसंद नहीं आया? अच्छा नहीं लगा क्या? शायद ये थोड़ी वजनी है, दूसरे ला दूं क्या?
1: अम्मी कहाँ है?
0: बाबा, ये आपका है क्या?

0: मेरे छोटे से खानदान को सलाम। नईम, आतिफ और मेरे बेटे अलवान। प्यारे बच्चों, मैं जाते वक्त तुम लोगों को खुदा हाफिज नहीं कर पाई। एक लंबे सफर पर जा रही हूँ और तुम्हें खुदा के हवाले कर रही हूँ। अपना और अपने बाबा का ख्याल रखना। तुम्हें फिक्र हो रही थी ना, खुदा का शुक्र है।
1: खुदा का शुक्र है।
2: अपनी माँ के बारे में पूछ रहे थे ना?
0: तुमसे बात कर रहा हूँ।
3: मुझे यकीन है अम्मी मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती।

0: वादा किया था उन्होंने।
1: अब चली गई हैं तो क्या करूं? खत तो देख लिया ना तुम? तुम भगवान को पढ़ के सुनाओ।
2: बाबा सच कह रहे हैं।
1: पढ़ के सुनाओ।
0: सच कह रहे हैं पापा।
1: कहाँ जा रहे हो?
0: मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया आपने। दिया? दादा से पूछने जा रहा हूँ।

0: क्या बात है, जाग गई है? बस बस मिल गया सुकून।
1: अकेले ना जाए, मुझे याद आएगी।
0: इतना मत रो बेटी, इधर मेरे पास आ जाओ। आ जाओ बेटी, आ जाओ मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। यहाँ रोते नहीं है,
2: कोई फायदा नहीं जाने का।
0: चुप हो जाओ,
2: रुक जाओ।
3: मैं इस तरह से हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती
0: मेरी जान।
3: मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती
0: मेरी जान, रो नहीं।
3: अब शायद जिंदान की दीवारों से टेक लगाकर बैठना ही मेरे इंतजार की शिद्दत को कम कर सकता है।
0: सो जाए तो चली जाना,
3: सोने का वक्त गुजर गया है, अब नहीं सोएगी।
0: इतने दिन से हिलाल मामू से मिलने की जिद कर रही थी तुम। मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी जाके उसके कांधे पे सवार हो जाती। चलो चुप हो जाओ, जाओ।
1: सवार होके क्या करूं? मुझे पापा की याद आ रही है। शायद मेरे इंतजार के दर्द को भी जिंदान की दीवार कम कर सकती है।
0: सुन लो,
1: मुझे पापा की याद आ रही है।
0: ठीक है ठीक है, रो मत मेरी बच्ची, रो मत।
2: वासित की जुदाई हम सभी के लिए काफी है, तुम मजीद हमारे दर्द को ना बढ़ाओ।
3: तुम्हें क्या हो गया है हिलाल मेरे भाई, कोई खबर मिली है?
2: कैसी खबर, देख रही हो कितना रो रही है बच्ची। अगर बाहर ले जाने से चुप होती है तो बाहर ले जाओ।
0: अगर मुश्किल नहीं तो इसे भी साथ ले जाओ, अली को मैं देख लूंगी।
3: आओ जाओ मेरी बच्ची, जाओ अली को बोसा दो, बोसा दो अली को।
0: शाबाश, जाओ खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा, जाओ।

0: माया, दोबारा ना मिल सके तो माफ कर देना।
1: काफिला निकलने तक मेरा इंतजार करना। तुम्हारे जाने से पहले जरूर आ जाऊंगी, इंशाल्लाह जरूर आऊंगी।
2: बस बस छुपो जाओ, छुपो जाओ।

0: सर की पट्टी नहीं मिल रही है।
1: सामान भी बांध लिया? माँ से माफी मांगे बिना ही मक्के जा रहे हो तुम?
0: आपकी शर्त बड़ी सख्त थी, लेकिन फिर भी उसे मानकर मैं आपसे माफी मांगने आया।
1: खुदा का लाख लाख शुक्र है।
0: लेकिन उस दिन मेरे जहन में जो सवाल पैदा हुआ था, जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा मैं वो खत हरगिज नहीं लूंगा।
1: पूछो, जो भी सवाल है पूछो।
0: आपने हबीब के खत पर दस्तखत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और आपने देखा भी है कि अगर खत पकड़ा गया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो फिर आप अपने बेटे की जान पे जुआ क्यों खेल रही हैं?
1: ये कैसी बातें कर रहे हो हिलाल? कैसा जुआ? तुम मेरे

0: बस अल्लाह की अमानत हो। तुम जब पैदा हुए थे तो अली से भी ज्यादा कमजोर थे। मैंने अपनी जान लगा के तुम्हें पाला है, बड़ी सख्तियों में पाला है बेटा तुम्हें। तुम्हारी तलवार के हर वार और हर तीर के लिए नजर उतारी है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें आखिरत की सआदत का रास्ता दिखाऊं। मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ ताकि तुम्हारा हाथ औलाद अली के दामन से अलग ना हो।
1: आप अपने बेटे को नहीं जानती। अगर खत का मामला ना भी होता तब भी मैं इमाम से मुलाकात के लिए मक्का जाता।
0: जानती हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, अच्छी तरह जानती हूँ।

0: ये सफर का खर्च है। मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, मेरी आंखों की ठंडक के लिए बस जब इमाम के पुरनूर चेहरे पर तुम्हारी निगाह पड़े तो मेरी तरफ से भी जी भर कर उनकी ज़ियारत कर लेना।
1: ये भी बहुत खूबसूरत है।
2: मुझे भी बहुत पसंद है।
3: मेरी सलीकेमंद बेटी तुम्हारे किस काम आएगी?
2: मैं सोच रही हूँ पर्दा बना लूँ।
1: कहाँ के लिए?
2: बेटी के कमरे के लिए।
1: शायद बेटा हो तो फिर
3: आहार
2: अलवान है।
3: आहार
1: बिस्मिल्लाह। ये क्या तरीका है?
3: आहत कहाँ है?
2: अलवान क्या हुआ बेटा?
3: आपने क्या किया है उनके साथ? कहाँ भेजा है मेरी माँ को? मैंने खुद सुना था अपने कानों से। आपने कहा था कूफा से चली जाओ। बच्चा नहीं जो किसी खत पर यकीन कर लूँगा। बताइए मुझे, जवाब दीजिए, कहाँ गई है मेरी माँ?
1: ये क्या कह रहा है आहत?
4: खत? कौन सा खत?
3: मेरी माँ का खत।
4: तो उसने खत लिखा था? मैंने कहा था उस जलील औरत की फिक्र करना छोड़ दो।
2: बाबा,
3: मेरी माँ का नाम इज्जत से ले।
1: अलवान,
4: यहाँ मेरे पास आओ। आओ, पहले आंसू साफ करो।
3: खुदा के लिए माँ से कहिए वापस आ जाए।
4: ठीक है, वापस आ जाएगी।